क्या तुम ये समझते हो कि बे आजमाइश बहिश्त में जा दाखिल होगे, हालांकि अभी खुदा ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं, और ये भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करें।

और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह खुदा के दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर राह खुदा में वाक़े हुई उनके सबब उन्होंने ना तो हिम्मत हारी और ना बुजदिली की, ना काफिरों से दबे, और खुदा इस्तक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है।

0: now.
1: जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में खुदा को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस मखलूक को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू कयामत के दिन हमें दोजख के अजाब से बचाइयो।

लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए, और खुदा से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो डरो, और कतई मौद्दत अरहाम से बचो, कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हें देख रहा है।

نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है।

0: खुदा उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं, फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर खुदा मेहरबानी करता है और वो सब कुछ जानता और हिकमत वाला है।
1: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

0: और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करना चाहो और पहली औरत को बहुत समाल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना, भला तुम नाजायज तौर पर और सरीह जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे।
1: वो कई

और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और खुदा की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था।

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। योर होस्ट टुडे इज माय सेल्फ डॉक्टर फैसल तूसी। आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। माय को-होस्ट इज डॉक्टर सदव जीशान, ही इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आज आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। Thank you for introducing. Bilkul, and today we are going to tell you about our engineering domains and programs at UCP. And we look forward for you to listening to us and hopefully getting a great insight of what we have to offer in the engineering faculty at UCP. So let's have a detailed intro first. Dr. Faisal, aap apni degree ke bare mein, research domain areas ke bare mein pehle agar kuch hame guide kar dein, toh we can take it from there.
0: Yes, so my background is in electrical engineering. I did my bachelor's degree from UET Lahore in electrical engineering, and I did my master's degree in electrical engineering from the University of Southern California, which is in the United States. I did my PhD in electrical engineering from UCP Lahore, from the Faculty of Engineering, the very first PhD that ever came out of the Faculty of Engineering.
1: Zabardast. And aapka jo research domain kya hai, and can you tell us a little about that?
0: Yes. I've always had a love for signal processing, and in particular audio signal processing. So my research basically was in the field of audio signal processing and audio engineering. In particular, I did my research in something called 3D audio. And I saw that most of you have heard of surround sound and spatial sound. Imagine that surround sound and spatial sound in the vertical domain as well. And you can go to upper niche or dying by her jagger say, I'll get beach up with her. Whether it's for music, whether it's for a movie theater, it's a boss applications out there. So I tested during my PhD, I tested the sound quality of 3D audio on electronic devices. Other than that, I also do research in a domain called Internet of Things, which simply means ke duniya ke har cheez, har device ko hum internet ke zariye hum connectivity dete hain, chahe wo laptop hai ya cell phone hai, chahe wo ek refrigerator, chahe wo ek air conditioner, chahe wo ek TV set hai. Connecting all things together is called the Internet of Things. Dr. Saba, obviously, so you're also into research. What are your research domains?
1: Sir, I would also like to tell you that I did my PhD in mechanical engineering from UET, and my research domain is basically about on precision agriculture. जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एंड वी आर स्टिल यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स. तो मेरी कोशिश ये थी कि हम ऐसी मशीनें और ऐसी टेक्नोलॉजी यूजिंग AI इंटीग्रेटेड मशीन्स हम उसके अंदर डालें, ताकि हम ऐसी मशीनें बना सकें जिससे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर बूम करे. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस रिसर्च, एंड वी कंटिन्यू दिस रिसर्च फॉरवर्ड एज वेल. एंड आई हैव कंटिन्यू दिस रिसर्च विद अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस, एंड सस्टेनेबल की तरफ भी इसको जाके हमने इसकी काफी एरियाज डोमेन्स को हमने एक्सप्लोर किया है, एंड रिसर्च इज स्टिल कंटिन्यूइंग. And we hope to see a change.
0: Precision agriculture is certainly something that Pakistan needs today. Okay, so about the Faculty of Engineering, we currently offer 4 degree programs at the undergraduate level: a bachelor's degree in electrical engineering, a bachelor's degree which we call BSc in mechanical engineering, BSc civil engineering, and also BSc in robotics and intelligent systems, which is currently our most popular degree program. We also offer MSc and PhD in degrees in electrical engineering, mechanical engineering, and civil engineering.
1: Excellent. That means there's a lot of domains to be discovered in engineering. तो मुझे पहले ये बताएं, why should a student come in engineering? ऐसे engineering में क्या है जो why would you want a young person, a young 18-year-old, 17-year-old to come into engineering?
0: So engineering basically has so many applications and so much scope, not only in Pakistan but all over the world now. And a lot of people don't know this, but computer science, the first generation of computer scientists were actually electrical engineers.
1: And really?
0: They're still working by and large today. So think of computer science itself, jo ki khud ek bahut bada domain ban chuka hai, as an offshoot of electrical engineering. And then mechanical engineering, which we call as the mother of all engineering, which has so many applications. Like, for example, for electrical engineers, we have end up working in factory automation, in power generation. We have our graduates working in power policy, electronics companies, embedded programming, different software houses. They're designing integrated circuits, microchips. They are working in artificial intelligence, machine learning, Internet of Things, which I just mentioned, robotics, solar systems, and whatnot. So electrical engineering has so many domains right now. I mean, telecommunications, which almost bull gear. So there's so much scope for engineering in general and for electrical, mechanical and civil engineering in particular, which a lot of people don't even realize.
1: बिल्कुल ऐसे ही है. एंड आई बिलीव कि इंजीनियर्स वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं. आप बाकी भी साइंस की एंड टेक्निकल टर्म्स डोमेन्स हैं हमारे पास, लेकिन आई थिंक जिस तरह की चीज़ें जो मशीन्स जो और इस तरह की इनोवेशंस एक इंजीनियर कर सकता है, बाकी फील्ड्स उसे कम्प्लीटली नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इधर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मशीन्स एंड स्टफ. तो आई थिंक इंजीनियर्स आर बेसिकली पीपल हु कैन एक्चुअली कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू स्टफ. So coming forward, ये हमारा जो प्रोग्राम है यूसीपी में इंजीनियरिंग का, इसके बारे में हम कुछ बताएंगे हमें कि इज इट इसकी एक्रीडेशन कहाँ से है और क्या स्कोप है इस प्रोग्राम का.
0: यस, सो फॉर एवरी डिग्री प्रोग्राम नीड्स फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू बी चार्टर्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, सॉरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एंड ऑल्सो नीड्स टू बी रिकग्नाइज बाय द हायर एजुकेशन कमीशन. वी हैव ऑल दैट. एंड देन there's another body called the regulatory body called the Pakistan Engineering Council, which accredits different engineering programs. And yes, all of our batches have been accredited and we are fully recognized by the Pakistan Engineering Council. And another point that a lot of people don't know about is that the Pakistan Engineering Council is also what we call a signatory of something called the Washington Accord, basically in which about 32 countries have signed this agreement in Washington. Pakistan Engineering Council is one of the bodies that signed this agreement. And each of these 32 countries basically recognize each other's degrees. And it includes all the countries that most of our graduates like to go to, like Australia, United States, Europe, and all the countries and most of the countries in Asia. So, which basically makes our degree recognized in all these countries. And at the same time, let's say, also helps in immigration procedures.
1: Excellent. So that means if you have an engineering degree from UCP, you're not only accredited by Higher Education Commission, but also by Pakistan Engineering Council, and you can directly do a job in these 32 countries that you're suggesting.
0: Exactly, yes.
1: Wonderful. Okay, so हमारे अभी तक इतने graduates हो चुके हैं यहाँ पे, तो इनकी job placements और इनकी कहाँ कहाँ पे ये job कर रहे हैं अभी, do we keep a record of that or do we track our alumni also?
0: Yes, we do. We have an active alumni office and we are always actively engaged and keeping in touch with our alumni and all our graduates. And I can tell you that our graduates, I mean, obviously they are well placed in Pakistan in a lot of the leading companies, and now they're reaching executive positions, but they're also placed literally all over the world. I am in touch with graduates some of our older graduates who are working in America, working at Google, in the Middle East, in Dubai, Saudi Arabia, Australia, Europe. They are literally all over the world, well placed, and they've also have advanced degrees. Many of them have master's degrees and PhDs from Europe and from the United States. So yes, our graduates are really well placed and we are still in touch with them.
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड एज फार एज मैकेनिकल इंजीनियर्स आर कंसर्न, आई पर्सनली नो लॉट ऑफ एलुमनाइज हु आर वर्किंग इन मल्टी नेशनल कंपनीज, एंड आई नो लॉट ऑफ एलुमनाइज आर वर्किंग एट वासा, वाप्टा, पेप्सिको, पावर प्लांट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एरोस्पेस. सो यस, यू आर राइट, इंजीनियरिंग का स्कोप भी बहुत ज्यादा है. And I personally see a lot of our alumni, especially when they graduate from here, they end up in very good places eventually.
0: Yes, and some of our graduates are also company owners. I mean, end up starting their own business. Like I was just 10 minutes before we started this, I was in a conversation with one of our graduates who graduated like just 3 years ago, and he formed and is successfully running his own solar system provider company. And he's doing a lot of business. And we have a lot of our graduates who have formed different kinds of companies. So they're not just job seekers, but also job providers. And yes, we have graduates in software houses, in WAPTA, NTDC, so power generation, power, and different IPCs, independent power producers, working everywhere. And a lot of our graduates are also working in artificial intelligence and machine learning in different software companies in Pakistan and abroad. And I personally placed so many of our own graduates in different automation companies in Lahore, and most of those graduates ended up working somewhere in the Middle East in very high paying positions. So, Dr. Saiba, could you say a few things about the admission criteria for engineering?
1: पहली तो आपको ये बताना चाहती हूँ, बिसाइड्स FSC स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो टेक इन मेडिकल स्टूडेंट्स,
0: FSC प्री मेडिकल, यस
1: जी बिल्कुल. अब तो लॉट ऑफ पीपल नॉट अवेयर ऑफ दिस दैट वी वेलकम ऑल सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विद CS बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स विद डिप्लोमा बैकग्राउंड, वी वेलकम ऑल ऑफ देम एट UCP कैंपस बिकॉज वी बिलीव इन डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट इनटेक. ऑल्सो अब मेडिकल के तो वैसे भी अब इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो बायो मेडिकल, बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ स्कोप इन इंजीनियरिंग. एंड इंजीनियरिंग इज समथिंग व्हिच इज नॉट जस्ट लिमिटेड नाउ टू मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, बल्कि ये आपको हर फील्ड में आपको इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड नजर आएगी. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी डू टेक इन मेडिकल स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, डिप्लोमा होल्डर्स, ऑल ऑफ दैट. प्लस हमारा जो है रोबोटिक्स का, हमने रोबोटिक्स इंटेलिजेंस सिस्टम का जो नया प्रोग्राम लॉन्च किया है उसकी रिक्वायरमेंट भी हमारी इज 50%, बाकी प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट इज एन इनटेक ऑफ 60% आपकी होने
0: चाहिए. FSC 60% रिक्वायरमेंट. गुड थिंग यू रेज दैट पॉइंट दैट we are taking in diploma engineering graduates, which be yani jinhone DAA kiya hua, so they can also apply, and we are not only can they apply, we welcome them as well. And if anyone did their FSC in pre-medical, then they would just need to take what we call an accelerated deficiency course in mathematics, and then they're good to go just like everyone else.
1: Bilkul.
0: So yes, but 60% for engineering, and then in FSC for is a requirement in engineering. But for our robotics program, which is extremely popular, and you require 50% overall or equivalent in your FSC.
1: Correct. सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि जॉब प्लेसमेंट्स की ही अगर हम मजीद उस पर बात करें, जैसे कि आई डू नो कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आई वांट टू नो कि इफ आई एम टेकिंग अप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, मेरे आगे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, मुझे कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है, बिकॉज एक 18-year-old को नहीं पता होता कि इंजीनियरिंग की अंदर डिटेल्ड डोमेन्स क्या हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मैकेनिकल की बात करें तो वी हैव डिजाइन बेस्ड जॉब्स, मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, आप क्वालिटी इंस्पेक्टर्स बन सकते हो, ISO की इंस्पेक्शंस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, पावर प्लांट में जा सकते हैं, ऑटोमोटिव में जा सकते हैं. आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के बारे में बताना चाहेंगे कि इसमें जॉब प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं?
0: जी, सो I think so. If I was addressing an 18-year-old or 17-year-old, हमेशा मैं उनको बताता हूँ आप यही देखो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में. सिर्फ लोगों को मत देखो और जो आप सुनी सुनाई बातें होती हैं कि जी यहाँ जॉब ज़्यादा है या वहाँ जॉब ज़्यादा है, उस चीज़ को मत देखो. जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपको कोई टैलेंट डेवलप हो जाए, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे, बन जाते हैं, मिल जाते हैं. सो एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न, एनी फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, they should know that by the time they're in their second year, even definitely once in their third year, first of all, like everyone else, wo freelancing online kar sakte hain. Hamare students is second year mein to bhi bhi freelancing kar rahe hain online. Freelancing ka matlab hai ki online wo paisa kama rahe hain, chote chote projects leke, assignments leke online paisa kama rahe hain. We have some of our students who are earning, you know, in the third year of their engineering, who are earning hundreds of dollars a month.
1: Wow.
0: Just by doing freelancing online. ये ठीक है, वो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स भी करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स भी करते हैं, मैंने सुना है मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स भी करते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स अवेलेबल ऑनलाइन.
1: आप भी कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो इंजीनियरिंग में आप डेवलप अगर कर लेते हैं, जो कि हम सिखाते भी हैं, वी टीच यू टॉप मोस्ट स्किल्स, अगर आप वो सीख लेते हैं यू कैन बी वन ऑफ द टॉप अर्नर्स इन फ्रीलांसिंग एंड यू कैन वर्क इन प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, फाइवर एंड सो ऑन.
0: जी डेफिनेटली. एंड A lot of people believe that all the jobs and all the scope is in computer science. Well, it's not untrue. I mean, we do have a growing CS industry, and driven by AI and data science, basically all over the world, that industry is booming. But what people don't realize is that engineering graduates can also do those jobs. Engineering graduates can also join a software company and pretty much do the same thing that they're doing. Artificial intelligence, machine learning, data science is all taught in our degree programs as well. We have extensive coursework in our electrical engineering program in both at the undergraduate, yani ke BSc level pe or MSc level pe bhi, extensively hum machine learning or artificial intelligence hum padhate hain.
1: बल्कि अभी सर जो नया करिकुलम आया है, अभी जो हम इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल में भी और सिविल में भी पढ़ा रहे हैं, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इन सब की इंटीग्रेशन शामिल है. और इन सब चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इन डिटेल बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो कहीं पर लैग ना करें. इस पे यूजली गिव एन एग्जांपल कि आप एक सीएस का स्टूडेंट कोडिंग तो कर लेगा लेकिन टेस्ला नहीं बना पाएगा. टेस्ला के लिए yes. आपको एक इंजीनियर ही चाहिए है.
0: एग्जैक्टली, इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और एनी सीएस ग्रेजुएट ऑब्वियसली he'll have those software skills and maybe have more knowledge of different software tools. Chill, anyhow, I think it's time for a break now. We'll catch up on this point in a few minutes. Time for a music break.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। माय नेम इज डॉक्टर फैसल तूसी एंड माय को-होस्ट टुडे इज डॉक्टर सतीश ईशान। We're both from the Faculty of Engineering, and today we're talking about engineering in general and engineering at UCP. So we just left off on a point about related to CS and engineering. So yes, a point that you mentioned earlier, that an engineering graduate basically and studying engineering gives you a certain mindset and certain problem solving mindset, and gives you certain skills to be able to, which helps you analytically look into any matter. So anyone who goes through engineering can easily pick up the subject matter of any other field, pretty much, well, within reason, of course, which is why you see a lot of engineering graduates and end up doing their master's degree or even their PhD
2: that
1: in computer
2: true.
1: Science.
2: That is true.
1: Because we have most of the requisite knowledge for studying computer science and so on. And at the same time, you see a lot of engineering graduates doing their MBA, because once you've been through that 4-year degree program of engineering, doing an MBA isn't all that too difficult for you. And it really adds to your profile if you're working in the industry. So we were also talking about the scope of engineering in general. So इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है, हमेशा यंग लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि देखें आप अपना इंटरेस्ट देखें, अब लोगों से सिर्फ सुन के आप ना देखें कि इस फील्ड में ट्रेंड ज़्यादा है या उस फील्ड में ट्रेंड कम हो गया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ आर यूथ आर जस्ट रशिंग टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंप्यूटर साइंस इज रियली अबाउट। चीज़ तो बहुत अच्छी है, बट इसका स्कोप पाकिस्तान में वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद इतना नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा है जितना कि अब ग्रेजुएट्स निकलना शुरू होंगे अगले चंद सालों में। ऑन दी अदर एंड, क्योंकि रुझान इंजीनियरिंग तरफ कम हो गया है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू एडमिशन्स, तो दूसरी तरफ फिर चंद सालों में इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब्स बहुत ज़्यादा निकलना शुरू होंगे। सो इट्स गोना बी दिस काइंड ऑफ अ पुश एंड पुल इफेक्ट।
2: सर, मुझे ये लगता है कि जैसे कि वर्ल्ड डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं और लोग जिस तरह ऑटोनोमस और ऑटोमेटिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे कि अब हमें बहुत एक शिफ्ट नज़र आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, ईवी, सस्टेनेबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। आप देखते हैं कि अब पाकिस्तान में भी बड़ा कॉमनली नज़र आता है कि सोलर घरों में भी, रेजिडेंशियल में भी बहुत कॉमनली नज़र आते हैं। तो ये सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी से की तरफ जो सारी जो वहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना और ये डिवाइसेस को, ये सारी चीज़ें जो है, मुझे नहीं लगता उससे इंजीनियरिंग की ट्रेंड में कोई कमी आएगी इन फ्यूचर। बल्कि मुझे इनफैक्ट लगता है कि बिकॉज वी नीड मोर ऑटोनॉमस मशीन्स एंड वी नीड मोर सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशंस, तो ये ट्रेंड मजीद बढ़ेगा विद टाइम एज कम्पेयर टू अभी करंटली जो हमारा सिनेरियो चल रहा है।
1: Software is only one part of the solution. Software basically needs first of all, it needs to run on hardware.
2: Correct.
1: And it's only one part of the whole solution, which means basically पीछे कोई ना कोई किसी hardware को वो drive कर रहा होगा. And that hardware has to be made by engineers. Like you mentioned the Tesla car, so excellent example. So for those of you who don't know, basically Tesla is a company owned by Elon Musk.
2: I think they would know. I think everybody knows Elon Musk, right?
1: Yeah.
2: So I'm sure right anybody now in engineering is familiar.
1: He's literally the richest man in the world right now. And so Tesla basically makes, up till now, makes the most popular electric vehicles in the world. Now, so uska jo software hai, theek hai, wo software engineers likh lenge. But then they will need a whole multitude of different types of engineers, for example, electronics engineers, mechanical engineers,
2: right,
1: material engineers, and so on, before to be able to design and create a car like that. So, like I said, software is only part of the whole equation. Engineering basically completes the whole product. To uske liye puri team chahiye hoti hai, sirf software wale nahi. And like I mentioned before, a lot of engineers basically after graduating, they actually become software engineers too, because they can do those jobs, maybe with a little bit of training or and so on.
2: So aap ye kehna chah rahe ki engineer to software ka kaam kar sakta hai, software engineer kaam kar sakta hai, lekin ek software engineer ka kaam nahi kar sakta, ek CS student engineer kaam nahi kar sakta.
1: Bilkul aisa hi hai.
2: और ये बात सही है। एक तब हमने जब कोरोना आया था, हमने देखा था कि एकदम जो सबसे पहले, अगर आपको याद हो, जो शॉर्टेज आई थी वेंटिलेटर्स की आई थी, हम एकदम वी नीडेड ऑल दोस मशीन्स, एंड इवेंचुअली द गवर्नमेंट वाज पुशिंग पाकिस्तानी इंजीनियर्स टू मेक मशीन्स लाइक वेंटिलेटर्स एंड स्टफ एंड ड्रोन्स फॉर स्प्रेइंग एंड फॉर क्लेंजिंग। आपको अगर याद हो तो यूनिवर्सिटीज में एकदम वो स्प्रेड हुई थी खबर कि हाँ जी, दे वॉन्ट टू मेक मशीन्स रिलेटेड टू दैट। तो मैं वही कह रही हूँ कि इंजीनियर जो है बेसिकली आपने जो भी मशीन्स और जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं वो इंजीनियर्स की तरफ से ही यूजली आते हैं और उनकी तरफ ही देखा जाता है ऐसे टाइम्स ऑफ क्राइसिस में फॉर सॉल्यूशंस.
1: जी मुझे अभी तक याद है यू मेंशन द वेंटिलेटर थिंग ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक. उससे बल्कि HEC की तरफ से एक फंडिंग कॉल आई थी जिसमें बहुत जल्दी फंड करना चाह रहे थे, बहुत जल्दी इनको प्रोडक्ट चाहिए था. एंड आई अप्रोच्ड एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इस तरीके से कि भैया हम करना चाह रहे हैं तो वी कैन वर्क विद यू. उस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में कम थे उस वक्त. ही हैड ऑलरेडी बीन द सीईओ ऑफ द कंपनी सेड दैट ही हैड ऑलरेडी बीन अप्रोच्ड बाय टू अदर पार्टीज कि भैया ये हमने बनाना है, इस फंड के लिए अप्लाई करना है. सो यस, when it comes to making certain solutions, only engineers can do that. Obviously software engineers kabhi jagah importance hai and unke bagair bhi kaam to mukammal nahi hota, but then again it's just part of the equation, not the whole equation as some people believe these days. So now let's talk about engineering at UCP now.
2: ji bilkul, aapne ye to bata diya ki engineering important hai. अब मुझे ये पता है इंजीनियरिंग यूसीपी में क्यों की वहाँ पे क्या खसूसियात है और इंजीनियरिंग में ऐसी क्या खास, हम इंजीनियरिंग में क्या स्पेशल हम और क्या हमारे हाइलाइट्स हैं जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के जो कि थोड़े से डिफरेंट है या आप कह सकते हैं प्रोएक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान.
1: जी सो द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग स्टार्टेड इन यूसीपी इन 2003. यानी कि प्रीटी मच यानी कि यूसीपी बनने के कोई एक साल बाद हमारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू हो गया था, पर्टिकुलरली बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. एंड द वेरी फर्स्ट बैच बेसिकली जिसको हम कहते हैं FO3, दैट वाज अ बैच व्हिच इज स्टिल आई एम स्टिल इन क्लोजली इन टच विद बिकॉज दोज आर द स्पेशली द फर्स्ट फ्यू बैचेस ऑफ कोर्स दे आर स्टिल वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड since then every degree program was accredited by the Pakistan Engineering Council and us waqt ek journey shuru thi faculty of engineering ki up till now and now we have us waqt hamare paas 3 or 4 labs hai, now we have 12 different labs
2: in electrical
1: because ye sirf electrical ka bata raha hu. We have an electronics lab, an electrical machines lab, an electrical power lab, we have a telecommunications lab, we have an instrumentation and controls lab, we have a computer engineering lab, then we have a project lab, just to name a few. And now we consider the jewel in our crown, space technology lab as well.
2: Really interesting. Yes. Very nice.
1: So we have one of our faculty members, Dr. Kamran Saleem. He has funding now from 2 different government sources and he's doing research in space technology, particularly in satellite technology.
2: Space, that's something new for electrical engineering program in Pakistan.
1: Yes, it is. And he has different research assistants working for him and multiple projects, ongoing projects, which is actually he is making what we call cube satellites. And those are small miniature satellites, basically, which are fully functional and can be launched into space and meant for communication. So we have all that and he's doing an amazing job. So anyone basically who joins UCP will also be taking coursework and be able to work with Dr. Kamran Saleem in that lab, which like I mentioned has close to 10 million rupees of funding right now, but yeah, approximately 9 million to be more exact. So that's one of the highlights.
2: Jaisa aapne electrical ka bataya to mechanical ka I'm aware ke wahan pe 13 state of the art labs hain aur isme design ke latest softwares wagera jaise ke SolidWorks ho gaye, ANSYS wagera karaya jata hai. Iske alawa we have engines and power plants ke jo device ke jo chote chote parts hote hain wo bhi hum uski different machines wagera par hi jati hai. To basically aap kehna cha rahe UCP mein hum unko modern skills jo hai wo hum sikha rahe hain taki wo bilkul market ready rahe jab wo yahan se graduate kare. तो इसलिए हमारे जो फैसिलिटीज हैं यूसीपी में इट इज नॉट सेकंड टू एनी अदर यूनिवर्सिटी.
1: यस, आई कैन प्राउडली से दैट किसी के लैब्स हमसे बेहतर नहीं है. एंड दीज लैब्स बेसिकली वी बीन डेवलपिंग दीज लैब्स फॉर प्रीटी वेल मोर देन 20 इयर्स नाउ. एंड यस, दे आर एज गुड एज एनी लैब्स इन लाहौर एंड दे आर स्पेशियस एंड दे आर वेल इक्विप्ड. फिर आपने ठीक है आपने फैसिलिटीज की बात की. सो यस, यूसीपी इटसेल्फ हैज अ वेरी अपस्केल एंड वेल इक्विप्ड बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो भी हमारे कैंपस को विजिट करेगा उनको ये साफ वाजे हो जाएगा. ऑल एक्सलेंट फैसिलिटीज ऑन कैंपस, लाइक वी हैव अ सेपरेट जिमनेजियम फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स. वी हैव आवर ओन इंडोर स्विमिंग पूल विद अ प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्लांट. And anything you imagine.
2: And we have a lovely library.
1: Oh, yes.
2: I think it's simply once you go to the library, मुझे बड़ी कम लाइब्रेरी पसंद आती है, बट यूसीपी हैज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वंस.
1: यस, यूसीपी हैज अ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी एंड इट्स वेरी वेल केप्ट एंड वेरी वेल मैनेज्ड. वहां जाके वाकई वहां जाके बैठने को दिल करता है, बैठ के पढ़ने को दिल करता है, ऐसा है. और वहां पे भी अक्सर बल्कि जगह वो भरी हुई होती है, स्टूडेंट्स वहां से जब जाते हैं वो भी वहां बैठना पसंद करते हैं. यस, इट्स अ लवली लाइब्रेरी एंड डिस्पाइट ऑल दीज फैसिलिटीज यूसीपी ऑफर्स मल्टीपल स्कॉलरशिप्स टू इट्स स्टूडेंट्स. And they are merit-based scholarships. They are basically, depending on where you graduated from, for example, if you're part of the, coming in from the Punjab group, there's called separate scholarships for that, and so on and so forth. And need-based scholarships, and obviously students can take care of the government Honehar scholarships as well. So
2: agar ek student ek apna criteria pura kar leta hai, admission criteria pe utar jata, to he's eligible for all these scholarships?
1: Yes, he is.
2: And where can exactly he get this information, he or she can get this information about scholarships? Is it available on the website?
1: Yes, ucp.edu.pk, our website, and all the information is available over there. You can visit our main campus at any time. You can just visit the student services center, which will give them all the information, the admissions office. They can help them with all of that. So all of this is available online in the prospectus. And yes, multiple scholarships across the board for every faculty and for different offered for different categories. Just so I mentioned a whole bunch of jobs which our electrical engineering graduates end up doing. Let's talk about the mechanical engineering graduates. Like, for example, what kind of companies do they end up joining, or kis kisam ke wo phir nature of work unka kya hota hai?
2: बिल्कुल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर वी हैव डिज़ाइन बेस्ड जॉब्स. अगर आपको सॉलिड वर्क्स आता है, आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर ओन बिजनेस. प्लस यू कैन गो इनटू मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, यू कैन गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग. आप अगर ISO, जैसे कि आपको पता डिफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं हमारे अराउंड द वर्ल्ड, तो आप क्वालिटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं एंड यू कैन गो इनटू दैट एरिया. एनर्जी के हमारे ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो आप उसको स्टडी करके, हम वो भी स्टडी करवाते हैं, एंड यू कैन गो इनटू दैट डोमेन. और यू कैन ऑल्सो गो इनटू मैनेजरल रोल्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. वी सी अ लॉट ऑफ आवर ग्रेजुएट्स हु हैव डन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आफ्टर, एंड वी हैव अ कोर्स ऑफ दैट that we're offering in engineering. Plus, obviously, you can go into power plant engineering, HVAC, and automotive industry. So, separate hai hai, bilkul, we are the top recruits jo hote hain automotive engineering mein, wo aapko mechanical engineering nazar aayenge.
1: So, on that note of project management, I think it would be a good idea to just talk about our diversified curriculum. So, obviously, our degrees are in electrical engineering, mechanical engineering, and civil engineering and robotics. But we don't just teach technical courses. It's a well-balanced curriculum over 4 years in which we teach different, English language courses, mainly related to professional communication, communication skills in general. So different courses on that. We also teach, obviously, we are required to, and which I think is a good thing as well, that we teach Islamiyat and Pak studies throughout the curriculum.
2: And we do focus on not just technical skills, as you mentioned. We have five-year projects at the end of every degree. इसमें जिसमें बच्चों ने जो कुछ सीखा होता है वो आप उसको बकायदा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके, यू कैन मेक अ प्रोजेक्ट व्हिच कैन देन टर्न इनटू योर फ्यूचर बिजनेस आल्सो इफ यू वांट.
1: ऑफ कोर्स, व्हिच इज व्हाई वी टीच डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स वेल. वी टीच देम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, वी टीच देम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
2: एंटरप्रेन्योरशिप.
1: वी टीच देम, यस, ऑफ कोर्स, ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. फॉर द पर्पस ये होता है कि वो ग्रेजुएट करने के बाद वो सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ टेक्निकल काम करना चाहे, वो कुछ भी कर सकते हैं. एंड यस, द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज अ वेरी, एंड यस, ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट, वी आल्सो टीच देम एथिक्स एंड अदर अदर सोशल साइंसेज कोर्सेज. सो सम वर्सटाइल, इट्स डाइवर्सिफाइड, इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल.
2: You're right, and और इसीलिए हमने देखा है कि यूसीपी का जब ग्रेजुएट यहाँ से स्पेशल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जब मार्केट में जाता है, यहाँ हमें बहुत से ज्यादा एम्प्लॉयज से भी फीडबैक मिलता है कि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ स्किल्ड है बल्कि बड़े वेल ग्रूम्ड, एंड जो सॉफ्ट स्किल्स जिसे हम कहते हैं उसमें भी कदरे बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू मे बी सम अदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज.
1: So let's talk about those final year projects which you just mentioned, a very important point and a very strong point for any engineering graduate. So just to give our listeners an overview, all engineering students basically in their final year of engineering do something that we call a final year FYDP, final year design project. Wo pura saal chalta hai, yani ke 2 semesters ke pe span hota hai. To usme kya karte hain ki wo ek idea एक प्रोजेक्ट पूरा बनाते हैं स्टार्टिंग विद एन आइडिया, उसके फिर डिज़ाइन होती है, उसके फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और फिर उसके बाद वो उसके फिर फंक्शनिंग होती है एंड देन टेस्टिंग एंड सो ऑन बेसिकली एंड पे ऑब्वियसली उसके फिर इवेल्यूएशन होती है. वो जो प्रोजेक्ट होता है वो आइडिया से लेके समझें कि एक कंप्लीट एक प्रोडक्ट वो बना के निकालते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड व्हाइल दे डूइंग दैट उसको सबसे बड़ा वेल ऑब्वियसली वो एक चीज़ बना के तो पेश करते हैं, वो तो एक अपनी जगह की चीज़ है, बट दे एंड अप इन दैट फाइनली प्रोजेक्ट दे एंड अप अप्लाइंग all their skills and all their knowledge that they learned in the first 3 years on in one particular project, which we'll touch upon again in a few minutes. Now it's time for another music break.

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: Welcome back, everyone. So this is Dr. Faisal Tusi and my co-host, Dr. Sadar Zeeshan. We're at the Faculty of Engineering at the University of Central Punjab, and you're listening to FM 92.6, UCP Ki Duniya. So we were just talking about our engineering program at UCP, and we touched upon the very important topic of final year design projects, in which our students end up, in their final year of engineering, they end up applying all of their knowledge and skills that they've learned in the last 3 years on one and developing one project, which is usually ends up in some kind of, can end up in some kind of product. And like in electrical engineering, students work on different robotics projects, electrical vehicles, control of solar systems, just to name a few. So, and these projects have won awards in different forums throughout the country. A lot of our projects get funded every year by the Pakistan Engineering Council and the government body called IGNITE.
4: तो ये सारा फंडिंग जो होती है ये प्रोजेक्ट्स की इसमें ये सारा का सारा कंप्लीट फंडिंग होती है पार्शियल फंडिंग होती है बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट ईयर बच्चों को कंप्लीट फंडिंग मिली थी तो उन्होंने बिल्कुल ही वो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर एबल टू मेक सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स बिकॉज व्हेन दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग टू मच ऑन अ प्रोजेक्ट तो फिर आई हैव सीन स्टूडेंट्स यूजली एंड अप अप्लाइंग नॉलेज टू द फुलेस्ट एंड मेक सम अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स आप कुछ एग्जाम्पल्स देना पसंद करेंगे जैसे मैकेनिकल में आई रिमेम्बर अभी लास्ट ईयर वी हैड अ स्मार्ट मैकेनम बेस्ड व्हील चेयर जो कि पाकिस्तान में अभी तक बिल्कुल अवेलेबल नहीं है बनी नहीं है आपको टिपिकल एक व्हील चेयर नजर आती है बैठे बैठे ये व्हील चेयर आपको राइट लेफ्ट एंड आप फ्रंट बैक तो जाती है बल्कि डायगनली भी बिल्कुल जा सकती है एंड टर्न भी कर सकती
3: That's
4: है
3: interesting.
4: तो आई वुड लाइक टू नो कि इलेक्ट्रिकल में भी इस तरह के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई हैव सीन आई मायसेल्फ सीन सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स
3: सो फॉर एग्जांपल 2 years ago, one of our projects was sponsored by an industrial partner, and the students ended up making a proper working prototype for an electric bicycle.
4: Interesting,
3: so,
4: very nice.
3: Just to give you one example, and different solar companies often fund our a lot of our projects because I mean obviously solar system setup karna to kaam hota hai lekin at the same time usko improve karna usko efficient control se usko yani ki mazid efficient karna that's something which requires more research and development and
4: aapki sab baaton se yahi lag raha hai ki UCP chahti hai ki quality engineers bane without putting too much burden on the student so they are financing the projects we have scholarships for the students
3: जी.
4: So basically we want quality engineers chahe wo medical ki background se ho CS ke डिप्लोमा के एफ एस सी के हों वो आए यहाँ पे उनको स्कॉलरशिप्स भी हम ऑफर कर रहे हैं और अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह में इफ दे आर गुड इनफ तो दे गेट फंडेड एज वेल व्हिच इज वेरी नाइस
3: यस एंड टू क्रिएट क्वालिटी इंजीनियर्स ऑब्वियसली वी नीड क्वालिटी फैकल्टी And now, once again, I'm proud to say that we have excellent faculty, hardworking, they're dedicated and self-sacrificing. All are well qualified. Like, for example, in the Department of Electrical Engineering, half of the faculty members have PhDs, and there are even those who don't basically are well dedicated, well, very well learned and dedicated faculty members doing putting in a lot of hard work.
4: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. इसी तरह से हमारे पास civil में भी और mechanical engineering में भी we have one of the best faculties, very hardworking faculty and highly qualified and skilled. और मजे की बात जो मुझे लगती है UCP की faculty में कि बड़ी diverse है. ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही फील्ड में सारे स्पेशलाइज्ड फैकल्टी मिलेगी जैसे आपके इलेक्ट्रिकल में आप बेहतर बता सकते हैं कि एज यू सेड के यू हैव सम फैकल्टी हु हैज एक्सपर्टीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स हु हैव एक्सपर्टीज इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर डोमेन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल
3: यस इलेक्ट्रिकल मशीन्स रिन्यूएबल एनर्जी control of electrical machines and power electronics so we have faculty members who are experts in this domain photovoltaic cells basically which is a basic building block of solar cells and yeah we have a faculty member who literally did his PhD in photovoltaic based systems and of course then there's myself who is into signal processing and audio engineering and internet of things and we have other faculty members basically who have industrial experience who can help with who are experts in electronics and communications and of course we have and the gentleman who's heading the space technology research center obviously he has expertise in all forms of telecommunications and of course satellite technologies
4: बिल्कुल सही. एंड हमारी भी इधर अगर हम देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वी हैव एक्सपर्टीज इन एनर्जी सेक्टर, इन साइड डिजाइन में हमारे पास है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वी हैव डिफरेंट फैकल्टीज हु हैव एक्सपर्टीज इन दैट. और यही वजह है मुझे लगता है कि बिकॉज वी हैव सच अ डाइवर्स एंड क्वालिफाइड फैकल्टी दैट जो यूसीपी ग्रेजुएट्स हैं वो, एंड विद द हेल्प ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूसीपी प्रोवाइड करता है, वी आर एबल टू क्रिएट ग्रेजुएट्स विच आर हाईली स्किल्ड एंड totally market ready and very competent when they enter the market. What is your intake on that?
3: Most definitely, yes. I mean, 100%. Like recently, one of our own graduates completed his PhD and he did, and his work was all related to applied machine learning. And now, through him and basically and one or two other of our faculty members, we are offering extensive and very well-written coursework in machine learning and artificial intelligence. And not only that, we're also conducting research in machine learning and artificial intelligence too, through our own PhD students and our MSc students at the same time. So yes, our graduates will definitely, when they graduate, they will have all the required skills to meet the demands of today's industry. And I'm confident that they will do well and be successful in life.
4: जी बिल्कुल. और बिल्कुल इंजीनियर के इससे आई वुड लाइक टू ऑल्सो एड एन एंडिंग नोट ओवर हियर दैट देयर वाज अ वर्ल्ड सर्वे. और आपको जान के खुशी होगी कि जो दुनिया में सेकंड मोस्ट सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं उनकी जो डिग्री होती है वो इंजीनियरिंग है. एंड विद दैट वी वुड लाइक टू एंड दिस प्रोग्राम. थैंक यू फॉर लिसनिंग.
3: थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग. सो साइनिंग ऑफ टुडे इज डॉक्टर फैसल तूसी एंड
4: डॉक्टर सदफ जीशान. थैंक यू.
3: यूसीपी की दुनिया.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूं आजम तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं नबील नासिर। खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे शो नई दुनिया में। जी हाँ, नई दुनिया, जिसमें होती है नई दुनिया में होने वाली बहुत सी टेक्नोलॉजी की बातें, आपकी बातें, मेरी बातें, और इंसान को टेक्नोलॉजी किस तरीके से मुफीद कर रही है उसकी बातें। मेरे साथ मौजूद हैं नबील भाई। नबील भाई, क्या हाल है आपके?
4: अल्हम्दुलिल्लाह आजम, आप कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो ओवरऑल कैसा चल रहा है सब कुछ?
4: बस जिंदगी जो है ये बस ऑपोजिट्स के साथ ही चल रही होती है। अच्छे की अहमियत तब तक होती है जब तक बुरा हो, तो बस अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
3: अच्छा नबील भाई, आप बताइएगा हमारे सामीन को कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता शोज में बड़े मजेदार टॉपिक्स लेके आए हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंसानों को फायदा पहुंचा रही है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से एग्रीकल्चर में फायदा पहुंचाती है, और टेक्नोलॉजी जिंदगी के इंसान के किस किस पहलुओं में इंसान को फायदा पहुंचा रही है, आज किस टॉपिक को लेके आए हैं आप सामीन की खिदमत में?
4: बिल्कुल, हमने जैसे गुज़िश्ता एपिसोड्स में भी टेक्नोलॉजी के फायदों पर बात की, टेक्नोलॉजी के नुकसानात पर भी बात की, आज भी थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी के हवाले से ही बात करेंगे। जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम भी नई दुनिया है, तो नई दुनिया के मसाइल और नई दुनिया के फ़ायदे और तमाम चीज़ों की बात करते हुए हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम पास्ट में जाएं और बैकग्राउंड देखें, तो आपने देखा होगा कि पहले लोगों का इन्हसार एग्रीकल्चर पर होता था, और एग्रीकल्चर से ही वो अपनी प्रोडक्शन और तमाम लाइवलीहुड्स देख रहे होते थे, अपने तमाम अखराजात को देख रहे होते थे। फिर एक दौर आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और इंडस्ट्री लगी, और हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू हुई और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ लगें, और उसके समरात जो हैं वो हमने देखे, उसके नुकसान भी देखे। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पिछला गुज़िश्ता दो दहाइयों में बहुत ज़्यादा बूम है, एक टेक्नोलॉजी में एक बूस्ट है, तो यकीनन इसकी इंडस्ट्री में भी बूस्ट है। इसकी इंडस्ट्री हमें एस्टेब्लिश किसी हद तक होती भी नज़र आ रही है, कुछ हद तक हो भी गई है, तो बहुत सी चीज़ें इसकी इंडस्ट्री के हवाले से भी हैं। तो एक्चुअली आज जिस हम टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है। जी आजम,
3: बिल्कुल ऐसे ही है नवील भाई, जिस तरीके से आपने बात की कि जो तरक्की है और जो टेक्नोलॉजी है, आप देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी है वो इस टाइम पे इंसानी तरक्की की आई थिंक चोटी पे होगी, जिस तरीके से वो डे बाय डे आगे प्रोग्रेस कर रही है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भी इसी के अराउंड। हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंडस्ट्री में किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा रही है। तो कुछ उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग डाटा पे। नबील भाई, बिग डाटा के बारे में बताइएगा कि बिग डाटा होता क्या है।
4: अच्छा, आपने बहुत अच्छा पहला जो है वो पॉइंट रेज किया है। बिग डाटा, डाटा बहुत ज्यादा रोल अदा कर रहा होता है टेक्नोलॉजी में और मुख्तलिफ पहलुओं में, टेक्नोलॉजी में भी और उसके अलावा भी। लेकिन मेरे ख्याल से हम सामीन के लिए थोड़ा सा डाटा को समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा है क्या। एक्चुअली हमारे पास कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका रॉ मटेरियल मौजूद होता है, डाटा भी इसी तरह की एक चीज़ है। हमारे पास अगर फिगर्स की कलेक्शन है, हमारे पास कोई भी एक रॉ मटेरियल मौजूद है, तो वो डाटा कहलाएगा। अगर हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं, एक फ़िल्टर कर लेते हैं, थोड़े से फार्मूलाज अप्लाई कर लेते हैं उस पर, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो इन्फॉर्मेशन है। मुख्तसरन इसको मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ कि एक क्लास है, एक क्लासरूम है, और हमारे पास तमाम बच्चों के रिजल्ट्स मौजूद हैं नंबर्स की शक्ल में। अगर हम उन नंबर्स को परसेंटेज में निकाल लेते हैं, उनको ग्रेड्स में डिवाइड कर लेते हैं, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक शीट पे ले आते हैं, तो जो हमारे पास उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आएगा, जो उससे हम नतीजे अखज़ कर सकेंगे कि कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी क्लास कैसे परफॉर्म कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन होगी। तो इन्फॉर्मेशन और डाटा का एक लिंक समझना बड़ा ज़रूरी था, बिग डाटा। अब हम ज़रा आते हैं कि बिग डाटा क्या है, टेक्नोलॉजी में इसका क्या रोल है। बिग डाटा से مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا عام الفاظ میں, اور اس کی بہت زیادہ کلیکشن ڈیٹا کی, اور اس کی پھر پروسیس کر کے اس کو انفارمیشن میں بنانا. باقی اعظم, آپ کا کیا خیال ہے بگ ڈیٹا کے بارے میں؟
3: بالکل نبیل بھائی, اس طریقے سے آپ نے پہلے ڈیٹا کی بات کی تو مجھے ڈیٹا کی آپ کی بات سمجھ کے اتنا تو آئیڈیا ہو گیا کہ ڈیٹا آپ کسی انسان کو سمجھنے کے لیے اور اس کی انفارمیشن کو نکالنے کے لیے ہی آپ استعمال کرتے ہو ڈیٹا, تاکہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, کیسے کہہ رہا ہے. اب جہاں پہ انڈسٹری کی بات کی جاتی ہے اور بگ ڈیٹا کی بات کی جاتی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈسٹریز, جو ایک ایگریکلچر کی انڈسٹری ہے, جو ایک ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے, جس طریقے سے وہ اس کو استعمال کرتی ہے, وہ آئی تھنک, مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے اور انسانوں کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بگ ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے. ہر روز ٹریلینز کے حساب سے ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ, ٹھیک ہے, جس میں انسان کیا کرتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پہنتا ہے, اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ انفارمیشن جو انڈسٹریز والے لوگ ہوتے ہیں, جو کہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں, جو کہ انڈسٹریز چلا رہے ہیں, ان کے پاس ان کا ڈیٹا سارا جاتا ہے. وہ ایک ڈیٹا سارا پروسیس کرتے ہیں اور آپ کی میری دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کا انٹرسٹ کیا ہے. فار ایگزامپل, اگر میں ایک کلوتھنگ برانڈ کی بات کرتا ہوں, ٹیکسٹائل ایک مل کی بات کرتا ہوں, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کرتا ہوں, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک کسٹمر کو سمجھنے کے لیے, کسٹمر کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کے ڈیٹے کو وہ استعمال کرتے ہیں, اس کے ڈیٹا پورا نکالتے ہیں وہ کہ وہ اس بندے کے انٹرسٹ کیا ہے, وہ پورا دن استعمال کیا کرتا ہے, وہ پورا دن کیا کھا رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, وہ کس طریقے کا ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہے, وہ کس طریقے کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتا ہے, پھر اسی کے اکارڈنگلی ہی اس بندے کو وہ اسپیسیفک ایک اس کا جو آرٹیکل ہوگا ان کا, جو ان کو پتا ہوگا کہ یار اس کو یہی چیز پسند آئے گی, وہی اس کے سامنے شو کریں گے انسٹاگرام کے تھرو, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو. تو نبیل بھائی, آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے کہ یہ جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, یہ کیا انسان کی بہتری کے لیے اور انسان کو مزید فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یا تو اس سے کسی انسان کا غلط نقصان بھی کیا جا سکتا ہے ڈیٹا کی مدد سے؟
4: بالکل آدم, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ڈیٹا کو ایکسپلین کیا, اور اس کا انڈسٹری میں آپ نے اس کا یوز بھی بتایا. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے گزشتہ اپنے تمام ایپیسوڈز میں بات کی, اور جیسے ہم نے ابھی بھی بات کی, کہ ہر چیز کے اپوزٹس ہوتے ہیں, اور یہی دنیا کی خوبصورتی ہے کہ اگر اچھا ہے تو برا بھی ہے, اور اچھائی یہی ہے کہ خوبصورتی بھی یہی ہے کہ وہ برے سے کرتا ہوتا ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا کہ اس کے کیا فائدے ہیں ڈیٹا کے اور بگ ڈیٹا کے, اور کیا نقصانات ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ اس پر میں آپ کو مزید ایکسپلین کروں گا, اور آپ کو بہت اچھے سے اس پہ بات کریں گے. یہ بہت ایک ہاٹ ٹاپک ہے, اور میں تو بہت دنوں سے اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. ہم ایک شارٹ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.

0: Entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP, FM 92.6, UCP Ki Duniya. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीबी की दुनिया प्रोग्राम नई दुनिया में आपका खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डेटा पे, बिग डेटा पे, एल्गोरिदम्स पे, कि डेटा क्या होता है, क्या क्या नहीं होता और इंडस्ट्री में उसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। नबील भाई, अब इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, टेक्नोलॉजी ऐसी जो कि बहुत सी जगहों पर फायदा पहुँचा रही है इंडस्ट्री में?
1: जी आजम, बिग डेटा पर हमने ब्रेक से पहले बात की और बिग डेटा का हमने थोड़ा सा इस्तेमाल देखा कि किस तरह वो इस्तेमाल हो रहा है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज में, मार्केटिंग में, एक गैप समझने के लिए, लोगों के पेन पॉइंट समझने के लिए, ताकि प्रोडक्ट को वो उस तरह तैयार कर सकें। और ये तमाम चीज़ें, बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन अगर हम चीदा पहलू देखें, थोड़े से ब्रॉड पहलू देखें जिन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी, तो मेरे ख्याल से हम ड्रोन की बात किए बगैर नहीं रह सकते। ड्रोन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत मुख्तलिफ अंदाज में उसकी कंट्रीब्यूशन है। आपका क्या ख्याल है?
0: बिल्कुल नबील भाई, ऐसे ही है। ड्रोन की जहाँ तक बात की जाए तो ड्रोन आज से पहले, अगर आप पीछे दौर में चले जाएँ तो ड्रोन आज से पहले सिर्फ इस्तेमाल होता था फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, मूवीज़ बनाने के लिए, शॉट्स को लेने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को लेने के लिए। मगर अब आपका क्या ख्याल है कि ड्रोन मूवीज़ इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है?
1: जी आजम, एक तो जैसे कि आपने मूवी इंडस्ट्री की बात की, तो अगर हम तकरीबन एक दहाई पीछे चले जाएं तो मूवी इंडस्ट्रीज में भी ड्रोन्स नहीं इस्तेमाल हुआ करते थे, और हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि तब हेलीकॉप्टर्स पर शॉट्स लिए जाते थे, एरियल शॉट्स लिए जाते थे, और मूवीज़ की जो एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा होता होगा, और ड्रोन ने इसको किस कदर ईजी कर दिया और किस कदर बजट फ्रेंडली कर दिया है। आपने पूछा कि इसके अलावा किन पहलुओं में इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। आज़म, बहुत इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो हमारे देही इलाकों में लोग अपना एक सर्विलेंस रखने के लिए, अपने खेतों की निगरानी के लिए, खेतों का एक चेक रखने के लिए कि कहाँ पर पानी दिया जा रहा है, कहाँ पर बीज है, कहाँ पर फसल डैमेज है और हमने उसको रिपेयर करना है। आपने देखा होगा कि एक ग्रीन शीट लगाई जाती है, और किसानों में भी जो बड़े किसान होते हैं, जिनकी ज़मीनें ज़्यादा होती हैं, वो एकड़ों के हिसाब से ज़मीन होती है, और वो एक बंदा उसको, उसका सर्विलेंस, उसकी एक चेक नहीं रख सकता। बहुत एक इम्पॉसिबल चीज़ है ये। ड्रोन्स ने इसको पॉसिबल किया है। अब वो ड्रोन उड़ाया जाता है और एकड़ों की ज़मीन का जो एक मुहासरा है और एक जो एक चेक है, वो 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर कर लिया जाता है, और इससे बहुत एक एफिशिएंसी आ रही है। जो हमारी यील्ड है, जो एग्रीकल्चर की जो एक एंड प्रोडक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा जो एक प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, क्योंकि उसमें नुकसान कम हो रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
0: जी नवील भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। जो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कि यार ये चीज़ में किस तरीके से इंडस्ट्री में काम कर रही है, ये ड्रोन किस तरीके से टेक्नोलॉजी उसमें एग्रीकल्चर में किस तरीके से फ़ायदा दे रहे हैं, मगर देखा जाए तो जैसे आपने बात की कि एंड प्रोडक्ट की, तो ये आपका सबसे पहली बात है कि जितना ड्रोन अब जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़े फार्मर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल को देखने के लिए, जैसे आपने बताया कि एकड़ों के हिसाब से उनकी ज़मीनें होती हैं। और अब देखें ना, अब हर एक इंसान एक एकड़ का सफ़र तो नहीं तय करेगा ना, और पूरी वन बाय वन हर चीज़ को चेक करेगा। उसे होता ही है कि बहुत सी अगर इंसान करने भी चाहे तो उसमें बहुत से ऐसा होगा कि इंसान थक जाएगा, इंसान की जो पावर है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और बहुत से ऐसा होगा, जगह पे ऐसा होगा कि कोई ऐसी फसल होगी वो ख़राब हो रही होगी और इंसान की वहाँ से नज़र से उधर उधर हो जाएगी। तो ड्रोन ने इंसान के एक वक्त को भी बचाया और उसकी ओवर एफिशिएंसी को भी बढ़ाया फसल की, और एक एंड प्रोडक्ट जिस तरीके से मार्केट में आ रही है वो ज़्यादा बेहतर होती है और ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन सी फसल किसको किस टाइम पर कितना पानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो एक एंड में जाकर कोई फसल लगी हुई है, कोई एक ऐसा पौधा जो कि ख़राब हो रहा है, तो वो हम ड्रोन की मदद से वो चेक कर सकते हैं। दूसरी बात नबील भाई, इसके ज़रिए से हम उनको एक बीज भी दे सकते हैं, जो एक पानी का ज़रिया होता है, वो छोटा मोटा उनको पानी भी वहाँ पे फराहम कर सकते हैं ड्रोन के ज़रिए, और कुछ बीज भी वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एकड़ का सफ़र तय करो और जाके एक फसल को जाके आप दो, बल्कि आप ड्रोन की मदद से आप उसको ओवरऑल आप उनको बीज प्रोवाइड कर सकते हो।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बीज की बात की, मैंने रिसेंटली ये देखा, कुछ बीज होते हैं जो इन डेप्थ उनको बोना होते हैं, वो तो जाहिर है उसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होगी, लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर ड्रोन्स की बात करें तो जो बीज फेंके जाते हैं पानी के अंदर और वो उसमें बहुत एफिशिएंटली जो है वो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सामाजिक राबतों की वेबसाइट्स पर और ऑनलाइन स्टोर्स की बात करें, एक बहुत प्रोमिनेंट ऑनलाइन स्टोर है जिन्होंने अपनी डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है। ये बहुत एक इनोवेटिव सी बात है, क्या ख्याल है आपके? आपने सुना है इस बारे में?
0: बिल्कुल नबील भाई, ऐसी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी बनाई ही इसलिए जाती है कि वो इंसान की जो एक मेहनत है उसको कम करने के लिए, इंसान का जहां पे एक सफर तय होता था हजारों किलोमीटर का सफर, उसको शॉर्ट करने के लिए, जहां पे इंसान सफर करता था कितने कितने दिन, उस सफर को शॉर्ट करने के लिए ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरीके से अगर आपने ड्रोन्स की बात की और जो डिलीवरी की बात की, तो ये देखें ना, उसने एक इंसान की एक पावर को कितना बचा दिया। जहां पे एक इंसान ने निकलना था और पूरा दिन उसने अपना टाइम लगाना था, डिलीवरी जगह जगह करनी थी, उसकी जगह ड्रोन ने ले ली है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान की जगह ले लेगी आने वाले वक्तों में?
1: नहीं, मुझे देखें, हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, फिर वही बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा। अगर होगा तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही होंगी। सर्विलेंस अगर हम उससे कर रहे होंगे तो बहुत से ऐसे पहलू भी होंगे जहां पर हमें ज़रूरत बढ़ जाएगी। इस तरह के मज़ीद टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। इसके हवाले से आदम शॉर्टली बताएंगे, इसके अलावा ड्रोन्स के अलावा आपको क्या लगता है कि किस टॉपिक पर हम जो है वो, इसके अलावा क्या ऐसा टॉपिक है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी?
0: नबील भाई, बात की जाती है तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी जगह पर टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर टेक्नोलॉजी फ़ायदा नहीं दे रही। आप अपनी ओवरऑल अगर हम अपनी ज़िंदगी को ही एक देख लें, एक ज़िंदगी को एक पूरा नोट कर लें, अपनी एक डेली रूटीन को ही नोट करें, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी के बगैर हमारी ज़िंदगी क्या है। तो टेक्नोलॉजी तो एक इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका हुआ है और हर एक पहलू में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा, मगर हम स्पेसिफिकली एक से दो टॉपिक्स हैं वो बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCB ke dhanya.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया. प्रोग्राम नई दुनिया में आपका खुश आमदीद. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी पे, किस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में और डिफरेंट इंडस्ट्री में किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और अपने वक्त को और अपने काम को और ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं. नबील भाई, अब हम किस बारे में बात करेंगे? मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टॉपिक होगा जो आप जिस पे हम बात करने लगे हैं, ये बड़ा फैसिनेटिंग है और बहुत से लोगों को इसका इल्म शायद नहीं भी होगा. क्या टॉपिक है आपका?
2: जी आज़म, ब्रेक से पहले हमने जिस तरह ड्रोन्स पर बात की, तो ड्रोन्स में होता क्या है? ड्रोन्स एक उड़ने वाली मशीन है, आम बिल्कुल एक लेमैन की जबान में, और उस पर कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरे से देख रहे हैं. कैमरे की इंडस्ट्री में भी, कैमरे की जो एक मैन्युफैक्चरिंग है और कैमरे का जो यूज़ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है. हम देख रहे हैं कि कैमरा हर जगह इस्तेमाल हो रहा है. कैमरे का एक और भी बहुत अहम इस्तेमाल है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, वो है इमेज रिकॉग्निशन. सर्वेलेंस के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ कर रही होती हैं, स्टेट्स यूज़ कर रही होती हैं सर्वेलेंस रखने के लिए, एक चेक रखने के लिए. हमारी समाजी राबतों की वेबसाइट्स इवन के इसको इस्तेमाल कर रही होती हैं, एक इमेज रिकॉग्निशन के लिए, लोगों को एक डाटा कलेक्शन के लिए. इसको अगर हम लिंक करते जाएं, बिग डाटा की कलेक्शन में एक बहुत ज़्यादा जो रोल है वो इमेज रिकॉग्निशन का है. इमेज रिकॉग्निशन होती है एक पर्सन की, तो उसके जो डाटा की कलेक्शन है वो बहुत ईजी हो जाती है. इमेज रिकॉग्निशन क्या है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक छोटा सा वाक्य आपको मुख्तसरन सुनाना चाहूँगा. आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह दिलचस्प भी लगेगा और क्लियर भी हो जाएगी बात. कोविड की बात थी, हम सब तमाम लोग घरों में थे, और ये उस टाइम की बात है जब पाकिस्तान में कोविड पीक पर था और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस हवाले से. शायद आपको याद हो कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कोविड फैलना शुरू कहाँ से हुआ? चाइना से. चाइना ने वुहान में और अपने एक प्रोविंस से अपने कोविड को बाहर नहीं जाने दिया, और उनकी जो उस हवाले से आउटपुट थी, उनका जो एक सर्वेलेंस था, उन्होंने जो जिस तरह से उसको उसकी रोकथाम के लिए काम किया, वो समझ से बाहर था कि पूरी दुनिया जो है वो एक क्राइसिस का शिकार है और चाइना ने कितने एफिशिएंटली इसको रोकथाम उसकी कर लिया. तो मैंने इसके हवाले से सर्च की, मुझे एक वेबसाइट का पता लगा और उस पर एक मुझे बड़ा इन डेप्थ आर्टिकल मिला. अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता चाहूँ कि चाइना से क्यों इसका, क्योंकि इसका आगाज़ हुआ और चाइना को इवैक्यूएट कर दिए गए वो तमाम इलाके, तो जर्नलिस्ट को मौका नहीं मिल सका कि वो एनी शाहिदीन इस हवाले से कम थे. तो एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पर थे और उनको इसको एक्सक्लूसिवली इसको कवर करने का और इसके ऊपर लिखने का मौका उन्हें मिला. तो उनकी मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी, मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ. चाइना ने जिस तरह से कोविड की रोकथाम किया, उसमें बहुत ज़्यादा रोल इमेज रिकॉग्निशन का है. इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और आप इसको समझ जाएंगे. जब भी कोई शख्स कोई चीज़ की ख़रीदारी के लिए, ग्रोसरी के लिए बाहर जा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन था और वैसे अलाउ नहीं था, लेकिन ग्रोसरी और जो डेली अशिया थी ज़रूरत की, उनके लिए आप निकल सकते थे बाहर, लेकिन मास्क और SOPs के साथ. तो अगर कोई शख्स मास्क नीचे करता था तो उसको भी पकड़ लिया जाता था इमेज रिकॉग्निशन की मदद से. अगर कोई शख्स खांसता हुआ या छींकता हुआ नज़र आता था तो उसको भी इमेज रिकॉग्निशन की वजह से, कैमराज की मदद से और एक उनकी जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस है उसकी मदद से, को उसका डाटा कलेक्ट कर लिया जाता था और उसके ख़िलाफ़ बकायदा कार्रवाई होती थी. आप देखें कि पूरी दुनिया में कोविड फैला, लेकिन आज चाइना ने किस कदर उसको एफिशिएंटली उसको कवर किया, और आज भी उनका कोविड सिर्फ वुहान प्रोविंस तक रह गया और उससे बाहर नहीं निकल सका. इसका बस इस चीज़ से आइडिया कर लें कि दुनिया ने उसके क्या नुकसान झेले और चाइना ने उसकी उसकी शरह का एक आप मवाजना कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा. तो इमेज रिकॉग्निशन का बहुत अहम रोल है. हमारी जो हम जो पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर, उसमें जब हम पिक्चर्स करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जब आपने किसी को टैग करना हो या आपने किसी को मेंशन करना हो तो आपको वो वेबसाइट्स सजेस्ट कर देती हैं, वो भी इमेज रिकॉग्निशन है. इमेज रिकॉग्निशन के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन ये एक प्राइवेसी के हवाले से और इस हवाले से बहुत सी थ्रेट है. आपका क्या ख्याल है इस बारे में आदम?
1: जी बिल्कुल नबील भाई, आप बहुत जिस तरह भी आपने सारा बताया कि किस तरीके से अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ऐसी जगह पे अगर आप किसी के साथ किसी पर्सन के साथ आपकी पिक्चर है तो वो ऑटोमेटिकली डाटा के थ्रू उसकी फेस को वो क्या कहते हैं पहचान लेता है और उसको ऑटोमेटिकली टैग कर देता है। इवन तो अब तो फोन्स में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हुई हैं कि ऑटोमेटिकली वो अगर आपके कोई ऐसा जानने वाला है जिसकी इमेज आपके फ़ोन के अंदर मौजूद है और वह 10-15 ज़्यादा इमेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी फेस की सबकी इमेज बना के एक ओवरऑल आपकी वीडियो बना देता है। तो इसमें प्राइवेसी का भी बहुत रोल आता है, जिस तरह की आपने बात की कि किस तरीके से हमारी प्राइवेसी यहाँ पे नुकसान देती है, ठीक है ना। ये एक बहुत लंबी डिबेट है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसके पॉजिटिव पहलुओं पर रहें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम इस पर नेगेटिव पर बात करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी की जहाँ पर हमने बात की है कि नुकसान भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के ज़्यादा फ़ायदे ही देखने को मिल रहे हैं।
2: बिल्कुल आदम, अभी तक तो हमने देखा कि जितने भी हमने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की तो टेक्नोलॉजी के मफादात और फ़ायदे ज़्यादा हैं बनिस्बत नुकसान के, लेकिन बिल्कुल हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और ये एक बहुत बड़ा अहम पहलू है जिस पर हमें देखने की ज़रूरत है। और सामीन के लिए भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें थोड़ा सा एहतियात के साथ इन तमाम समाजी वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अपनी प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल रखते हुए और SOPs के साथ, जिस तरह तमाम चीज़ों की SOPs होती हैं, एक तरीक़ेकार होता है, हमें इसको बिल्कुल एक तरीक़ेकार के साथ करने की ज़रूरत है। अगर आपने पिछले ब्रेक से पहले एक बात की कि अगर तमाम चीज़ें, जैसे हमने ड्रोन्स की बात की, हमने बिग डाटा की बात की, हमने इमेज रिकॉग्निशन की बात की और बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर हम अपने मुख्तसर वक्त की वजह से बात नहीं कर सके, लेकिन उसकी वजह से इंसान ने बहुत तरक्की की, लेकिन एक पहलू जिस पर हमें सोचने की भी ज़रूरत है और एक सवालिया निशान है कि अगर ये तमाम काम सॉफ्टवेयर्स, टेक्नोलॉजी और रोबोट्स ही करेंगे तो इंसान कहाँ जाएंगे? अगर तमाम गाड़ियाँ ड्राइवर लेस हो जाएंगी तो ड्राइवर्स की नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर अकाउंटेंट की जॉब एक सॉफ्टवेयर करना शुरू कर देगा तो अकाउंटेंट कहाँ जाएगा? दुनिया में पहले ही बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और ये तमाम चीज़ें, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपने मेरे से पूछा कि आपका इस पर क्या ख्याल है, तो मेरे ख्याल से कि अगर हम हकाइक पर देखें तो अभी इस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त डिसाइड करता है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसा पहलू है जो कि वक्त ही डिसाइड करेगा और वक्त के साथ ही हमें पता लगेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। आज का शो आपने सुना, अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको शो किस तरह का लगा। हमारे फेसबुक पेज FM 92.6 UCP की दुनिया पर भी अपनी ओपिनियंस और अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी ओपिनियन का इजहार कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको किस तरह का शो लगा। मजीद इस तरह के टॉपिक्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि सामीन का जो एक इंटरेस्ट है वो बहाल रहे। बहुत शुक्रिया FM 92.6 UCP की दुनिया से नबील नासिर हुसैन और हमारे को होस्ट आज़म तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
2: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: जी वेलकम बैक लिसनर्स, अब हम दोबारा जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, डॉक्टर हसन हमारे साथ जो गेस्ट हैं, तो अभी हम अपने प्रोग्राम को दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो जैसे अभी एकेडेमिया ज्वाइन करने से पहले आपका एक बड़ा वास्ट आपके जो एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्री के अंदर भी है, आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया हुआ है, तो आप इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों में क्योंकि काम कर चुके हैं, तो इस ताल्लुक को आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, ये दोनों शोबे जो है ना, चाहे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले लें या फार्मास्यूटिकल एकेडेमिया ले लें, ये एक दूसरे के लिए मैं समझता हूँ कि लाजिम और मलजूम है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये इनके पास रॉ टैलेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स। जो इंडस्ट्री है वो एक अमली मैदान है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इंटर्नशिप्स हम ऑर्गेनाइज करवाएं बच्चों की, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोलैबोरेशन में लिखें और कोर्सेज अपडेट करें एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस, तो हमारे तलबा ज्यादा कामयाब होंगे।
1: जी ठीक हो गया, तो आप अपने जो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को एकेडेमिया में कैसे शामिल कर सकते हैं, जरा हमारे और मजीद स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बता दें, क्योंकि हमारे पास
2: जो स्टूडेंट्स के पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, तो इस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं विद सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। जैसे मैं क्लास में कुछ अमली मिसालें देता हूँ, जैसे कोई इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई स्केल अप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, तो डिफरेंट केस स्टडीज जो हैं वो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। इसी तरह कोई रेगुलेटरी इश्यूज है, रेगुलेटरी में CTD कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा, उसकी प्रेपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, तो ये सारी अमली मिसालें जब स्टूडेंट्स को दी जाएंगी तो उससे उनके जो नॉलेज है वो बेटर होगा और वो अच्छे तरीके से रियल टाइम जो हमारी इंडस्ट्री में चीज़ें चल रही हैं उनको, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। इसी तरह क्वालिटी ऑडिट एक बहुत बड़ा फील्ड है कि हम जब ऑडिट करवाते हैं, ख़ास तौर पर जब हम किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपनी इंडस्ट्री में बुलाते हैं और एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लाइसेंस के लिए, कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें, हम टेस्टिंग करें, फिर उनकी वो ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट्स करते हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वाले, तो इन पे जब आप बात करते हैं, इनकी मिसालें देते हैं, तो एक किस्म का उनका नॉलेज भी बढ़ जाता है और उनको अमली मैदान में जो है वो फ़ायदा भी होता है। इससे तलबा को बेहतर अंदाज में समझ आती है कि इंडस्ट्री में असल काम होता कैसे है।
1: जी डॉक्टर हसन, तो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए, हमारी यूथ जो है, स्पेशली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक हमारा जो डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, तो इनके स्टूडेंट्स के लिए या बाकी जो फार्मा के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में ये फार्मास्यूटिकल जो करियर है ये एक अच्छी च्वाइस है, एक अच्छा इंतखाब है, थोड़ा सा इस पर भी ज़रा रोशनी डालें।
2: देखिए, अगर हम बात करें स्कोप के हवाले से, तो पाकिस्तान में इस टाइम पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 700 से 800 फार्मा कंपनीज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, यानी जिनके प्लांट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और इन्हें मैन पावर की, ख़ास तौर पर बासलाहियत अफराद की ज़रूरत रहती है, ख़ास तौर पर क्वालिटी कंट्रोल। अब इनके अंदर डिफरेंट शोबा जाते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स और प्रोडक्शन, तो इनमें ज़रूरत रहती है इनको अच्छे हुनरमंद अफराद की, तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा बूमिंग प्रोफेशन इस लिहाज से ये बन जाता है।
1: फार्मास्यूटिकल साइंसेज में कौन से ऐसे शोबा जाते हैं जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस का जो पोटेंशियल या स्कोप ज़्यादा होता है?
2: एक्चुअली हमारे चार फील्ड्स हैं, फार्माकोग्नोसी, क्लिनिकल फार्मेसी जिसे हम फार्मेसी प्रैक्टिस भी कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी। तो फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, फार्मेको विजिलेंस और क्वालिटी एश्योरेंस, ऐसे ये हैं शोभा जात हैं जो कि लोकली जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च में आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये सारे शोभा जात जो हैं, इनमें अगर किसी का इंटरेस्ट है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी ये जो हैं बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है इनमें।
1: तो जब भी हम कुछ भी करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली आपको पता है कि कुछ हमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, तो पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अभी जो करंट सिनेरियोज जो भी चल रहे हैं उसके हवाले से?
2: देखिए, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, ड्रैप की बनने के बाद, लेकिन फिर भी हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसकी पेचीदगियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे तहकीक के लिए फंडिंग की कमी है, हमारे पास तरबियत याफ्ता अफरादी कुवत नहीं है, खाम माल की दरामद में मसाइल हैं, जैसे आपको पता है कि इम्पोर्ट वैसे ही जो है वो मसाइल का शिकार है हमारी। ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन इनमें ही तरक्की के मौके भी मौजूद हैं। जैसे हम लोकली अगर इन चीज़ों को प्रमोट करें तो हम इन सारी मसाइल पर काबू पा सकते हैं और जो है हम तरक्की की राह पर जो है वो चल सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी करंट जो सिनेरियोज हैं, इसके अंदर हमारे यूथ जो है स्पेशली, जैसे हमारी यूसीपी के हैं या डिफरेंट एकेडेमिया के जो लोग हैं या यूथ है हमारी, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं इन चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए?
2: बेसिकली हम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तहकीक तरबियत और इंडस्ट्री से तावन, यानी हम जिसको हम इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी लिंकेजेस कह सकते हैं, दोनों के दरमियान कोलेबोरेशन होगा तो बेहतर मसाइल का हल जो है वो निकलेगा।
1: जी डॉक्टर हसन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारा एक सेशन चल रहा है और आई होप सो कि हमारी जो फार्मा के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी जनरेशन है, वो काफ़ी मुस्तफीद हो रही होगी, हमारे सामीन। तो अभी टाइम हो रहा है एक शॉर्ट सी ब्रेक का, तो अभी हम ब्रेक पे जाते हैं और सामीन आप सुनते रहे 92.6 UCB की दुनिया। तो अभी हम वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This
2: is 92.6.
3: वेलकम बैक सामीन, अभी हम वापस आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर हसन अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी वो गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आज के हवाले से। तो अभी डॉक्टर साहब, आप जदीद टेक्नोलॉजी जैसे आजकल AI का जमाना है और डिजिटलाइजेशन का, तो क्वालिटी कंट्रोल में ये हमारे लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है?
4: देखिए, आजकल AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल जो है ना क्वालिटी कंट्रोल में भी बढ़ रहा है। ये टेक्नोलॉजीज हमें डेटा एनालिसिस में मदद करती हैं। मींस हमारे पास बहुत सारे जब बैचेस बन रहे होते हैं उनका बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम इंडिविजुअली सबको देखें। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्टैट्स लगाते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, उनकी प्रेडिक्शन करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी आ चुके हैं जिसके अंदर हम आर्टिफिशियली एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं बॉडी का, और अपनी ड्रग की जो है वो चेक कर सकते हैं कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कैसी होगी, वो कितना असर करेगी, कहाँ कहाँ जाके। तो एक हमें एक आइडिया एक मिल जाता है, और हमें फिर जब हम उसकी रियल टाइम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और इसके अलावा हमारा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो जाता है। बहुत सारे जिसके अंदर हम कंप्यूटर की मदद से सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर लेते हैं और प्रोसेस प्रोडक्शन का भी ऑटोमेटेड तरीके से चलता रहता है। और जब ऑटोमेशन आ जाती है तो वहाँ पे मशीन की ऑटोमेशन आ गई तो वहाँ पे इंसानी गलतियों के जो हैं चांसेस वो कम हो जाते हैं, और इसी तरह फिर हमारी जो मियार है वो एक जैसा रहता है और उसमें बेहतरी आती है।
3: जी डॉक्टर साहब, तो दुनिया में तो AI के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और हमारी माशाल्लाह यंग जनरेशन भी इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, तो क्या पाकिस्तान में जो फार्मा कंपनीज हैं वो भी इन जदीद जो टेक्नोलॉजीज हैं या AI जो ये हमारी मशीन्स या जैसे अभी आपने ऑटोमेटेड मशीन्स का, क्या इनका वो इस्तेमाल कर रही है?
4: हाँ जी, बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे पास जिन्होंने डिजिटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो मुतारफ करवाए हैं। कुछ छोटी कंपनीज भी अभी सफ़र के आगाज में हैं, लेकिन बट इट इज़ वेरी इननेट स्टेज, नेसेंट स्टेज। मींस इसको इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट के मौके भी हैं और काफ़ी ज़्यादा तरक्की की गुंजाइश है।
3: जी, तो हमारी यहाँ पे फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, उसमें तलबा को क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से किस तरह आप तरबियत दी जा रही है या आप उनको किस तरह जो ट्रेन कर रहे हैं ताकि जब वो मार्केट में जाएं तो अपना एक नाम बनाएं, तो उस पर थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालें।
4: हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लोगों को यहाँ पे सेमिनार्स की सूरत में बुलाते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है इंडस्ट्री का, और ताकि वो क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से सेमिनार्स में इन आगाही दें बच्चों को। इसके अलावा हम लेबॉरटरीज में अमली तरबियत, इंटर्नशिप्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाते हैं तलबा को, ताकि क्वालिटी कंट्रोल के जदीद तकाजों से रोशनास हो सकें। इसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, वहाँ पे हम जाके मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस देखते हैं, और इसके अलावा वहाँ क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक हो रही है मेडिसिन की या दवाइयों की, वो हम देखते हैं।
3: वेरी नाइस, आप लोग तो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो काफ़ी काम कर रहे हैं, तो हमारी जो यूथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके फार्मा इंडस्ट्री में उनके कैरियर पर्सपेक्टिव के हवाले से क्वालिटी कंट्रोल में वो किस तरह अपना वो काम कर सकते हैं, कैसे वो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से थोड़ा प्लीज़ ज़रा आप बताइएगा हमारे सामीन को।
4: पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर के बाद एक्सपोर्ट्स में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है फार्मा सेक्टर का। इसी तरह फार्मा सेक्टर जो है इज़ अ वेरी एस्टेब्लिश सेक्टर इन पाकिस्तान। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी क्वालिटी के अपनी जॉब्स के बहुत सारे मौके मौजूद हैं, जैसे QC ऑफिसर, QA मैनेजर, QA ऑफिसर, रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये शोभा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक्वामी सतह पर भी तरक्की कर रहा है। डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिप्लोमास करवाती हैं, सर्टिफिकेशंस करवाती हैं, वो सर्टिफिकेशंस करके आपको काफी ज्यादा इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन एज अ QC एनालिस्ट मिल जाती है।
3: तो अभी करंट जैसे आपको पता है कि एकेडेमिया में स्पेशली जो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का बड़ा स्कोप है और होना भी चाहिए, जैसे स्टार्ट में आपने बताया भी, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए आप थोड़ा सा इस पे बताएं कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको लर्न करना, जिनको सीखना, जिनमें उनकी एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे फ्यूचर में जब वो फार्मा में जाएं अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो उनको वो बेसिक स्किल्स वो पता हों।
4: अच्छा ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसमें ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को GMPs जिसे हम कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एक टर्म यूज होती है जिसमें हम हमने गाइडलाइंस डिफाइन की होती हैं कि कम से कम हमारी जो मेडिसिन बन रही है वो इन स्टैंडर्ड्स के बराबर होगी। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का नॉलेज होना चाहिए, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस की लैब में जब हम काम कर रहे हैं क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कैसे करनी है, एनवायरमेंट में टॉक्सिक केमिकल्स कैसे डिस्कार्ड करने हैं, उनका हैजर्ड क्या हो सकता है, एनवायरमेंट को क्या नुकसान पहुंच सकता है, SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे जितने हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो आलात हैं खास तौर पे HPLC जिसे हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, इसके अलावा UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसके बारे में आगाही होनी चाहिए काम किस तरह करती हैं। FTIR एक अगेन टेस्ट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बताता है, जांच करता है कि ये दवाई कौन सी है, इसका मतलब ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो सारे उसके बारे में बेसिकली स्ट्रक्चर बताता है। इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एक अच्छे QC एनालिस्ट के तौर पे काम कर।
3: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन, बड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव आपका सेशन चल रहा है, बहुत सी चीजें अभी हमें लर्न करने को मिली है। और अभी आप प्लीज हमारे तलबा, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो।
4: नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि सीखने का जज्बा रखें, सिर्फ डिग्री पर ना रुकें, इंटर्नशिप्स करें, रिसर्च में हिस्सा लें, नए रुझाना से खुद को अपडेट करें और अपना किसी ना किसी अपना काम किसी ना किसी फोरम पे पब्लिश कराने की कोशिश करें ताकि आपको एक रिकॉग्निशन मिल सके।
3: जी, और ये जो हमारा FM 92.6 UCP की दुनिया, इस फोरम से अगर जो हमारे सामीन कराम जो इस टाइम हमें सुन रहे हैं हमारे साथ है, आम आवाम के लिए अगर आप दुआ के इस्तेमाल के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज।
4: हमेशा रजिस्टर्ड फार्मेसी से दवा खरीदें, खुद आलात से परहेज करें, जाली दवाओं से होशियार रहें, आवाम की आगाही ही मियार को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। कोई प्रॉब्लम आता है उसका एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, उस रिपोर्टिंग सिस्टम कंप्लेंट के लिए आप जो है वो इंडस्ट्री से या डिफरेंट फोरम्स पे रब्ता कर सकते हैं।
3: जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन के आपने अपना इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला है हमारे लिए और हमारे सामीन को, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपने बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव एक सेशन दिया है। बहुत सी हमने नई चीज़ें आपसे सीखी हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आपसे सीखने को मिली हैं। तो हम आपको मजीद आपकी कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाएं पेश करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैनेजिंग योर टाइम फॉर योर प्रीशियस आवर। थैंक यू
4: जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं UCP FM 92.6 में आया और आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया।
3: जी सामीन कराम, और इसके साथ ही हम जो अपने प्रोग्राम का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और फिर इंशाल्लाह फिर हम दोबारा आपसे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ यहाँ पे आएंगे और फिर आपके साथ जो है ना एक और प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच आपका सुनने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, और इसी तरीके से आप सुनते रहे FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

खुद से भी मिला करें, सर उठा के चला करें। खुदा के तरीके हम नहीं समझ सकते, हम उससे क्या गिला करें। दुनिया संग दिल बनती मेरी दुश्मन, हम कम अज कम खुद से ही सुला करें। कम बोला करें, ज्यादा सुना करें, रब देता है माफी फिर गुनाह करें। ये ताकत ठिकाने बदल सकती, कलम की ताकत तख्त भी पलट देती। लिखारी जान लेवा हूँ पर लिखाई ही रोज अब

फैक्स है ये फ्लेक्स नहीं, मुझे गालिब जैसा लिखने का फैज नहीं। वो हबीब है मेरे तो मुझसे दूर क्यों, वो हरीफ है मेरे तो उनकी खैर नहीं। आजकल भेजे मुझे टेक्स्ट अप व्हाट्सएप पे, दे वांट टू नो व्हाट्सएप। मेरी जिंदगी कितनों की हसरत, मैं मिसाल मेरा नाम लेते मसलन। दिल फेंक के ना दिल तोड़, बिलबोर्ड पे अब दिखे शक्ल इनको। मेरा बैंक बैलेंस लगता था पिन कोड, अब सफर देख सिर्फ सिफर गिनतू। आई बिलोंग हियर, जाने का मूड नहीं है। हेडलाइनिज्म तेरी कोई न्यूज नहीं है, क्या वो सुनते पर करते महसूस नहीं है। वादे टूटे पर टूटे हैं, सूल नहीं है।

जा सुल गए, कटे मेरे पर फिर भी जाने कैसे उड़ते, मुझे उड़ने दे, टूटे जो दिल हुआ जुड़ने दे, इन आंखों को खुशियों से भरने दे, अल्फाज मेरे दिल में उतरने दे, मंजिल तो खुश हो ठहरने पे, ये घर मेरा जड़ को ना मरने दे, उभरेंगे सूरज ये ढलने दे, वक्त लगे खुद को बदलने में।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

कर दिया गया, जहां बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पे यकम फरवरी 1947 को उन्हें फुल कैप्टन के ओहदे पे तरक्की दे दी गई। 1936 में आपकी शादी इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंतहाई सादगी से बीबी करम जान के साथ हुई। कैप्टन साहब बड़े सखी और फयाज इंसान थे। एक बार तांगे पे कहीं जा रहे थे कि एक बुढ़िया ने अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे मांगे, आपने तवज्जो नहीं की। कुछ दूर गए होंगे कि पशेमानी ने घेर लिया कि अल्लाह के नाम पे मांगने वाली को खाली हाथ लौटा दिया। फौरन तांगा वापस किया, बुढ़िया तब तक जा चुकी थी। आपने सारा दिन उसे तलाश किया और बिलआखिर शाम को कहीं वो औरत मिली। आपने उसकी मदद की और तांगे वाले को सारे दिन का किराया अदा करके रुखसत किया। कयाम पाकिस्तान के बाद आपने जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में सिग्नल कोर की तरबियत हासिल की, जिसके बाद आपको GHQ में पेशा वाराना फराइज अदा करने के अहकाम मिले। इन्हीं दिनों हिंदुस्तान अपना असल खबसे बातन जाहिर करके कश्मीर का महाज खोल चुका था। जुलाई 1948 को आपकी यूनिट पंजाब रेजिमेंट को कश्मीर के महाज पर भेज दिया गया। राजा सरवर शहीद भट्टी अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश हुए और कहा, सर मैं चाहता हूं कि अपनी यूनिट में शामिल होकर कश्मीरी भाइयों को जुल्मो सितम से निजात दिलाऊं, दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करूं। मुझसे यहां GHQ में नहीं रहा जाता, जबकि मेरे साथी जुल्म का मुकाबला करने के लिए यहां से जा चुके हों। कमांडिंग ऑफिसर ने आपके जज्बे से मुतासर हुए और उन्हें महाज पे जाने की इजाजत दे दी। 27 जुलाई 1948 मंगल के दिन ओड़ी के महाज पे आपने अपने साथियों के साथ दुश्मन के मोर्चों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। दुश्मन के मोर्चे से सिर्फ 20 गज दूर दुश्मन की पहली गोली आपके दाएं शाने पर लगी, मगर आप मुसलसल आगे बढ़ते, अपने जवानों से मुखातिब थे, साथियों आगे बढ़ते रहो कि मंजिल करीब है। दुश्मन ने मोर्चे के गिर्द खारदार बाड़ लगाई हुई थी। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद वो बाड़ काट कर अपने जवानों के लिए रास्ता बना रहे थे कि दुश्मन ने आपके सीने पर गोलियों की बौछार कर दी।

साथियों ने जब अपने ऑफिसर को शहीद होते हुए देखा तो उनका खून खोल उठा। उन्होंने दुश्मन पर भरपूर वार किया और उसे खाक चाटने पे मजबूर कर दिया। सुबह का उजाला ओड़ी के महाज पे पाक फौज की फतह और हुक्मरानी की नवीद लेकर तुलू हुआ। 27 मार्च 1957 को यौमे जमहूरिया के मौका पर मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने कैप्टन सरवर शहीद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर देने का ऐलान किया। 27 अक्टूबर 1959 को पाकिस्तान की तारीख के पहले फौजी इनकलाब की पहली सालगिरह के दिन सदर अयूब ने रावलपिंडी में एक तकरीब में शहीद की बेवा मोहतरमा बीबी करमजान को निशाने हैदर का एजाज पेश किया। पूरी कौम आज सरवर शहीद रहमतुल्ला अलैह को खराजे तहसीन पेश करती है। वो हमारा काबले फख्र माजी हैं, हमारी कौमी गैरत बहादुरी और जुर्रत की मिसाल हैं। उनकी शहादत हमारी आज़ादी की जामिनो पासबान है। जैसे कि शायर ने कहा था कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है।

पहले पहल कहा जाता था, जिसने बाप के जूते नहीं खाए उसकी किस्मत नहीं चमकी। यह बात इस कदर दुरुस्त समझी जाती थी कि हर बाप इस फर्ज को लाजमी पूरा करता था ताकि औलाद की किस्मत जरूर चमके। मगर जूं जूं माशरे में तब्दीली रूनुमा हुई, बच्चों को जूते खाना पसंद नहीं रहा। खामोश रहने वाले बच्चे अपनी शख्सियत में किस कदर पेचीदगियां समेट पाए, लफ्जों में बयां से परे है। यह कहानी अहमर की है। वो तन्हाई पसंद बच्चा था, उसका दिल हमेशा बाप की तरफ से डरा रहता था। सईद साहब के बच्चे उनसे बहुत डरते थे, यहां तक कि 3 शादीशुदा बेटों के साथ सईद साहब बड़े फखर से रहते थे। मजाल थी कि सईद साहब के सामने कोई ऊंची आवाज से सांस भी लेता। तीनों बेटे वकार, मुनव्वर और अहमर अलग घरों में रहना चाहते थे, मगर बाप की सख्त तबीयत के बायस उन्हें खामोश रहना पड़ता। तीनों लड़कों ने चूंकि बचपन में सईद साहब से इस कदर जूते खाए थे कि उनकी गर्दन अपने बाप की जानिब उठती ही ना थी। फिर वो दिन आया जिस दिन तीनों बेटे सईद साहब की चारपाई के पास आजी से खड़े थे। सईद साहब बहुत बीमार थे। उन्होंने अपने बेटों को अपने पास खास मकसद से बुलाया था। तीनों बेटों में से किसी को याद नहीं था कि आखिरी बार कब वो सईद साहब के कमरे में आए थे। सईद साहब के होते हुए उनकी गैर हाजिरी में उनका कमरा बंद ही रहता था। बिस्तरे मर्ग पर बाप को देखकर तीनों बेटे अफसुर्दगी से नजरें झुकाए खड़े थे। सईद साहब की आंखों में आंसू थे। उनके आंसू अहमर ने किनारों से बहते हुए तिरछी नजर से देखे थे। उन्होंने अपने बेटों को पास बैठने को कहा तो तीनों में से कोई भी ना बैठ पाया था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे आंखों आंखों में एक दूसरे से पहले आप कह रहे हो। फिर वही हुआ जो होना था। गाड़ी निकल गई और सईद साहब न जाने जिंदगी के कितने राज और दर्द अपने साथ लिए दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे माहौल में रहने वाले बेटों में भी अपनी कैफियत और जज्बात को अंदर ही अंदर रखने की बीमारी जड़ें पकड़ चुकी थी। तीनों ही अपने बच्चों से इंतहाई सख्ती से पेश आते थे, मगर बाप की मौत के बाद अहमर को अक्सर अपने बाप का आखिरी जुमला सताने लगा। वो अक्सर सोचता, क्यों हम में से कोई भी आखिरी वक्त में वालिद साहब के बिस्तर पर ना बैठ सका। वालिद साहब की आंखों से गिरने वाले आंसू मौत की तलखी के बाइस थे या उनकी वजह उनकी अधूरी तमन्ना थी जो अहमर के दिल में बाप की मौत के साथ पैदा हुई थी। अहमर का बेटा आफताब 10 साल का था। घर के माहौल के बाइस वो जान चुका था कि जैसे ही वालिद, चचा या दादाजी घर आए तो अपने कमरे में खामोशी से छुपकर बैठ जाना है। कुछ अरसे में तीनों भाइयों ने अपने घर अलग अलग कर लिए और सईद साहब की तरह घर के चीफ बन गए। मगर अहमर को अपने बाप की बेबसी सता रही थी। वो उनकी तरह मरना नहीं चाहता था, ऐसा शख्स जो मौत के वक्त भी अपनी औलाद का लम्स महसूस न कर सका। मुनव्वर और वकार अहमर की तरह नहीं सोचते थे। मुनव्वर ने जब अपने बेटे को फेल होने पर बुरी तरह पिटाई लगाई तो अहमर ने उसे रोकने की कोशिश की। अहमर को समझाते हुए मुनव्वर ने कहा, घोड़े को लगाम लगाकर नहीं रखेंगे तो काबू से निकल जाएगा। आफताब ने भी यह पिटाई देखी थी। अहमर आफताब की आंखों में खौफ महसूस कर सकता था। इस वाके के कुछ ही हफ्ते बाद अहमर नए घर में चला गया। वो अक्सर बच्चों से मुतल्लिक पढ़ता रहता था। वो समझ चुका था कि लगाम घोड़े को लगाई जाती है, एक इंसान तो मोहब्बत का भूखा होता है। उसने सोचा वो अलग घर में अपने बच्चों को खुशगवार माहौल देकर उनकी आंखों में बसे खौफ को दूर कर देगा। मगर घर बदलने से इंसान अपनी जात को तब्दील नहीं कर सकता। जाहिर को बदलना बातिल को बदलने से कहीं ज्यादा आसान होता है। अहमर ने अपने बच्चों से सख्ती करना बहुत कम कर दिया। वो अक्सर सोचता था कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बच्चों से करे। उसके अंदर शदीद ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी कि वो अपने बेटे आफताब को बताए कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो उसे बुलाता, उससे स्कूल से मुतल्लिक पूछता तो बच्चा खड़े खड़े जवाब देता और वापसी के लिए मुतमन्नी नजरों से देखने लगता। 10 साल आफताब ने अपने बाप को यही करते देखा था। सईद साहब की मौत भी उनके असर को खत्म ना कर सकी थी। घर का माहौल वैसा ही था जैसा उन्होंने बनाया था। वक्त गुजर रहा था
मगर अहमर की तमन्ना थी कि हसरत की तरह उसके वजूद को मुट्ठी में लिए थी। वो अपने बेटे से गले लगना चाहता था। अहमर को याद था वालिद से जिस दिन बहुत ज्यादा मार पड़ती तो उसकी माँ बहुत प्यार से गले लगाकर अहमर से कहती, बेटा मार तो गलती करने पर पड़ेगी ही, वैसे सईद साहब तुमसे प्यार बहुत करते हैं। वो दिल ही दिल में कहता, प्यार? उन्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है। मोहब्बत और खौफ एक जगह नहीं रह सकते। किसी इंसान से या तो खौफ महसूस किया जा सकता है या फिर मोहब्बत। ये जानने के बावजूद वो आफ्ताब की आंखों में नजर आने वाले अपने लिए खौफ को खत्म नहीं कर सका था। अहमर कभी अपने बाप से प्यार महसूस नहीं कर सका था, लेकिन उनकी मौत पर आंसुओं की वजह वह समझ नहीं पाया था। वो उसकी शख्सियत पर गहरे असरात रखते थे। वो कब बड़ा होकर उन जैसा हो गया पता ही ना चला। अहमर ने आफ्ताब पर कभी हाथ नहीं उठाया था, मगर उसकी बेटी आलिया और आफ्ताब उसके ऑफिस से आते ही कमरे में छुप जाते। उनकी आवाज धीमी हो जाती। अगर किसी वजह से वो उन्हें अपने पास बुलाता तो वो अक्सर बिस्तर के पास खड़े खड़े उसकी बात सुनते। पहले तो उसे इन बातों का एहसास न था, मगर बाप की मौत और उस आखिरी मंजर ने अहमर को बेचैन कर दिया था। दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं था जिससे वो अपनी दिली कैफियत बयान करता। उसने काफी दिन तक सोचने के बाद बच्चों को छुट्टियों पर मरी ले जाने का सोचा, जहां वो उनके साथ एक ही कमरे में रहे और उनसे इजहार मोहब्बत कर सके। मगर वो मरी में ले जाने के बावजूद अपने और बच्चों के दरमियान खौफ की दीवार को कम न कर सका। जिस कदर हिचकिचाहट बच्चे महसूस करते थे, वो उनसे भी ज्यादा ऐसी ही हिचकिचाहट का शिकार था। आखिरकार उसने एक डायरी में खलील जिब्रान की एक नज़म के बाद खतूत लिखने शुरू किए। नज़म कुछ यूं थी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वो जिंदगी की खुद तमन्नाई के बेटे हैं और बेटियां हैं। वो तुम्हारे जरिए आए लेकिन तुम में से नहीं, और अगरचे वो तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुमसे ताल्लुक नहीं रखते। तुम उन्हें अपनी मोहब्बत दो लेकिन ख्यालात नहीं, क्योंकि उनके पास अपने ख्यालात हैं। तुम उनके जिस्मों को घर दो लेकिन रूहों को नहीं, क्योंकि उनकी रूहें आइंदा के घरों में मकीन हैं, जहां तुम नहीं जा सकते, अपने ख्वाबों में भी नहीं। तुम उन जैसा बनने की जिद्दोजहद करो, लेकिन उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करो, क्योंकि जिंदगी ना पीछे को जाती है ना गुज़िश्ता कल में अटकी हुई है। तुम वो कमान हो जिससे तुम्हारे बच्चे जिंदा तीरों की तरह आगे को फेंके गए हैं। कमानदार लामतनायत की राह पर निशान ढूंढता है, और वो खुदा अपनी ताकत से तुम्हें झुकाता है ताकि उसके तीर तेजी से और ज्यादा दूर जाएं। मैंने जब से ये नज़म समझी है, मैं जान चुका हूं कि बच्चे कोई जानवर नहीं कि उन्हें हम अपनी मर्जी से हांके। उन्हें खौफ से हम सर्कस के लिए तो तैयार कर सकते हैं, मगर जिंदगी के सफर को खुशगवार बनाना खौफ से मुमकिन नहीं। मैं अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए खौफ नहीं, मोहब्बत देखना चाहता हूं। मोहब्बत वो जज्बा है जो एहतराम को जन्म देता है। वो तारीख लिखकर सबसे ऊपर लिखता मेरे बच्चों के लिए, जो दुनिया की पेश कीमत नेमत है। फिर वो अपने मोहब्बत का दिल खोल कर इजहार करता, उन्हें बताता कि वो उनकी किस किस हरकत को सबसे ज्यादा पसंद करता है। आफ्ताब 17 साल का हो चुका था जबकि आलिया 14 साल की थी कि अहमर का कार एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में था। आफ्ताब जब कॉलेज से आया तो उसे अम्मी ने बताया कि कुछ देर पहले ही फोन आया था। वो जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि चचा का फोन आया। उन्होंने आफ्ताब को अहमर का मेडिकल कार्ड लाने को कहा, जो बिल की अदायगी में मदद के लिए अहमर को उसके ऑफिस वालों ने दिया था। आफ्ताब ने अम्मी से पूछा तो वो कमरे में ढूंढने लगी। आफ्ताब और आलिया भी मेडिकल कार्ड को ढूंढने लगे तो आफ्ताब को बेड के नीचे के दराज में एक खूबसूरत सा डब्बा नजर आया, जो चॉकलेट का था। उसने हैरत से उसे खोला तो उसमें उसे एक डायरी नजर आई। डायरी में लिखा था मेरे बच्चों के नाम। उसे तजस्सुस महसूस हुआ कि पापा ने इसमें क्या लिखा है। ये डायरी खतूत का एक मजमुआ थी। आफ्ताब खत पढ़ता जाता
और रोता जाता। अम्मी और आलिया उसके पास आईं, उन्होंने भी डायरी में लिखे खत देखे तो हैरत से देखते ही रह गए। वो शख्स जो इंतहाई संजीदा और तन्हाई पसंद नजर आता था, रिश्तों में मोहब्बत का किस कदर मुतमन्नी था, वो आज समझ पाए थे। एक एक खत एक बाप की लामतनाई मोहब्बत का समंदर था, जिसमें उसने उन लम्हों को कैद करने की कोशिश की थी जिनको वो हकीकत में ना जी पाया था। उसने एक खत में लिखा, मेरे बेटे आफताब, तुम्हें क्या मालूम कि जब तुम अपनी कामयाबी का दबे लफ्जों में मुझे बताने की कोशिश करते हो तो मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें अपने गले से लगाकर कहूं, तुम ही मेरा फख्र हो। आफताब अपने आंसुओं को साफ भी ना कर पाया था कि उसके चचा का फोन आया। आफताब बेटा, तुम आ क्यों नहीं रहे? हमें हॉस्पिटल की तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करना है। उसने रोते हुए कहा, जी चचा जान, आ रहा हूं। वो खतों में से पहला खत पढ़ने लगा, जहां खलील जिब्रान की नज़म के बाद कुछ बातें और फिर पहला खत लिखा गया था जो कुछ साल पहले का था। वो पढ़ने लगा, जिसका उनवा कुछ यूं था, मेरे बच्चों के नाम जो दुनिया की बेश कीमत नेमत है। फिर रोते हुए आफताब ने यूं पढ़ा, मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। बाप कभी भी मां से कम प्यार नहीं करता, मगर वो मर्दाना खोल को तोड़ नहीं पाता। कुछ तोड़ भी लेते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हुआ। बहुत कोशिश की कि तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह पेश आऊं, अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर मैं सईद साहब की तरह अहमर साहब ही बना रहा। मेरा जी चाहता था कि मैं जब ऑफिस से आऊं तो मेरे बच्चे भागकर मुझसे लिपट जाएं। वो लम्हा मेरे लिए कयामत से कम नहीं होता था जब तुम लोग छुपकर कमरे में बैठ जाते थे। मैं जो कह नहीं पाया वो लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल जज्बात की शिद्दत से लबालब भर चुका है। अगर अब इजहार नहीं किया तो शायद फट जाएगा, इसलिए कागजों का सहारा ले रहा हूं। मैं अपने बाप की तरह अधूरी तमन्ना लिए इस दुनिया से नहीं जाना चाहता, इसलिए मेरी तमन्ना है कि तुम खुद ही ये खत देख लो और मुझसे लिपट के कह दो कि मेरी मोहब्बत को महसूस करते हो। मेरी बेटी, तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी जिंदगी है। तुम जो मुझे देखकर हंसना रुक जाती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मगर मैं कह नहीं पाता। मेरे जज्बात तो कैद है, मगर तुम लोगों के क्यों कैद हो गए? मेरे बच्चों, रब तुम्हारी कोई तमन्ना अधूरी ना छोड़े। आफताब और आलिया हसरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आफताब ने आंसू साफ करते हुए कहा, सच में हमने क्यों मोहब्बत में पहल नहीं की? पापा तो हमेशा शफकत से ही पेश आते थे। आलिया ने अफसरदगी से कहा, शायद हमारे जहन भी दादा जान के खौफ में जकड़े हुए थे। सोचो, हम पर इस कदर असर है तो फिर पापा पर दादा जान का किस हद तक असर होगा? आफताब ने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं तो जाते ही पापा से लिपट जाऊंगा। आफताब और आलिया हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके चचा और ताया उनके मुंतजर थे। आफताब ने कार्ड ताया जान को दिया और खुद उस वार्ड की तरफ चल पड़ा जहां अहमर को रखा गया था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि पापा से लिपट कर कहेगा वो भी उनसे बहुत प्यार करता है। आलिया का भी यही हाल था कि डॉक्टर ने उन्हें रोक दिया। आफताब ने कहा, मैं मरीज का बेटा हूं, मुझे अंदर जाने दीजिए। चचा ने आफताब से कहा, अहमर को जब हॉस्पिटल लाया गया तो 15 मिनट के बाद ही वो हम सबको छोड़ गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताएं बेटा। आफताब ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए और घुटनों पर बैठकर रोने लगा। आलिया का भी बुरा हाल था। आफताब रोते हुए सिर्फ यही कह रहा था, मेरे अल्लाह, मेरे पापा की तमन्ना भी अधूरी।

कहानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हम जाने अनजाने में अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा सख्ती करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत छोटी उम्र में हमसे डर जाते हैं और अपने ख्यालात, एहसासात, यहां तक कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात का इजहार करने से डरते हैं, और ये डर हमारे बीच बहुत दूरी डाल देता है। बच्चों को प्यार से सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार अपने वालिदैन से खुलकर कर सकें।

0: Admissions open for fall 2026. Explore the diverse degree programs offered by Faculty of Media and Mass Communication at University of Central Punjab. We are offering BS Media and Communication Studies, BFA Visual Communication Design, BFA Visual Art. Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucp.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: बचपन में कागज के जहाज उड़ाना, गली में हाथों को यूं फैलाना कि जैसे अभी हवा में उड़ जाएंगे। बड़ों से सुने आलम और रफीकी के किस्से, कुछ उन्हीं जैसा कर जाने का जुनून। इसी शौक के परवाज को दिल में लिए शाही सिफ्त मुजाहिद का हर बार ऐसी परवाज पे जाना कि जो दुश्मन को लर्जा दे। यही जज्बा जुनून है, यही इश्क है अपनी मिट्टी से, और इस इश्क की कोई इंतहा नहीं।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: ये जो खुशबू किसी एक वादे की है, इसके विरसे का हम इस्तियारा बने, हर तरफ फैलती बेअमारात में हो जो मंजिल निशान।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: बेटी जो कि खुदा की रहमत समझी जाती है, जब किसी घर में पैदा होती है तो उस घर को अपनी शरारतों और नन्हे कदमों से पुर रौनक बना देती है। मरियम भी अपने घर की रौनक थी। वालिद से बातें करना, वालिदा से लाड करना, सहेलियों से मजाक मरियम की आदत में शामिल था। मरियम की तरह मरियम के ख्वाब भी बेबाक थे। वो अक्सर ही अपनी वालिदा को अपनी शहादत से मुतल्लिक तैयार रहने का कहती थी।
1: सुबह 9 बजे मरियम का फोन आया कि बाबा मेरी मामा फ्लाइंग है, अगर मैं आ गई तो मैं फोन करूंगी, अगर मैं नहीं आई तो आप समझ जाना। ये वो हर फ्लाइंग में कहती थी, स्पेसिफिक उसने उस दिन के लिए नहीं। और मेरा हर वक्त यही जवाब होता था कि हाँ मरियम ठीक है, कोई बात नहीं, और आप चले जाओ, नहीं आओगे तो मुझे इधर उधर से खबर पड़ जाएगी।
0: बाप की उंगली पकड़ कर चलने वाली बेटी जब शहीद होकर बाप के सामने आती है तो इसके बाप की आंखें तो नम होती हैं, मगर सर फख्र से ऊंचा होता है। मरियम के बारे में इनके वालिद कर्नल मुख्तियार शेख का कहना है कि
2: तो मुझे एक आम बच्चे की तरह वो लगती थी, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि शी इज़ अ डिफरेंट, लेकिन यस अब जब मैं करता हूँ उसकी शी इज़ नॉट हियर, तो मैं महसूस करता हूँ कि उसमें क्या क्या खूबियाँ थी। कभी कभी मैं उसको कहता था मरियम ये आपकी डिग्री क्या होगी, BSc होगी, BS ऑनर्स होगी, क्या होगी? तो मुझे कहती बाबा मुझे आई एम लीस्ट कंसर्न, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मेरा ये बैज लग जाए, मेरा जो विंग लग जाए फ्लाइंग का, बस ये मेरी जो है एम है।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: नमाज से कजा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए।
1: जमीन देख, फलक देख, फजा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख। बेदार ना हो, मार काए बीम और रजा देख।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

www.musicfeed.edu.ek. FM 92.6 Live Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।